प्यारे सुनने वालों, यहाँ तक आप श्रवण की है बुद्ध महाराज की कथा, और यहाँ से हम मिलकर रूह बदलेंगे। उससे पहले हम आपके लिए एक गीत चला दे तो सुनेंगे हम, और आगे में क्या चर्चा होने वाला है जरूर से दिल थाम कर और इंतज़ार में बैठना।

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, खेल कोई नया सुबह शाम करो प्यार, ये गीत हम आपको अभी आगे में सुनाएंगे। पर उससे पहले हम सुनेंगे कि इस बार बबली जी क्या फरमा रहे हैं। बबली जी आप सुनाइए।
1: एक छोटा सा वाक्यांश। मीम साहब हेलो हेलो, नल की टोटी लीक कर रही है, प्लम्बर भैया इसे बदल दो आकर प्लीज। शांता जी आप जानते हैं टोटी क्या होती है?
0: मुझे नहीं पता टोटी क्या होता, अगर आप बता दो तो।
1: हाँ जी क्रान।
0: ओ क्रान।
1: हाँ जी
0: एक बार फिर से बोल दो।
1: टोटी।
0: टोटे।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: वैसे नल भी कहते हैं लेकिन टोटी भी कहते हैं। प्लम्बर जी, मीम साहब ठीक है पर अभी समय नहीं है, परसों बदल जाऊंगा। परसों? मीम साहब भैया तुम आए नहीं, आज टोटी बदलने को कहा था तुमने। प्लम्बर मैम आ रहा हूँ, शाम तक आपका काम हो जाएगा। शाम को प्लम्बर मैम आज नहीं आ पा रहा, कल अवश्य आऊँगा। कल? प्लम्बर ये लो मैम हो गया आपका काम। मैम साहब ठीक है भैया थैंक्स, कितने देने हैं? प्लम्बर 280 की टूटी, 20 का टेप 300 और लेबर के 400 रुपये, टोटल 700 रुपये दीजिए मैम। मैम साहब अरे भैया 700 तो बहुत ज़्यादा है, और आधे घंटे के 400 लेबर कुछ ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं आप? प्लम्बर नहीं मैम, दूसरी जगह चलता काम छोड़ कर आया हूँ। घिस घिस मत करो, 700 निकालो जल्दी, दूसरी जगह जाना है, पहले पूछ लिया करो आदमी है कि नहीं, अकेले काम करना पड़ता है। मैम साहब ठीक है ये लो भैया, पर तुम्हारे रेट बहुत ज़्यादा है। प्लम्बर अरे मैम आपको क्या पता, मरने की फुर्सत नहीं है, नमस्ते।

0: रहना है तो काम।
1: तो सुनने वालों, आपने सुना कि एक प्लम्बर कितना उसे काम है कि वो काम छोड़कर आया है और मीम साहब से पैसे भी ज़्यादा मांग रहे हैं और बेरोज़गारी भी है और काम वाले भी नहीं मिलते और आदमी है नहीं और बेरोज़गारी बहुत है।

0: पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती, नाम अपना न बदनाम कर करे।
1: आप तो सुनते हैं कि किशोर दास जी कैसे कहते कि नाम अपना बस बदनाम ना करो प्यारे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सुनने के लिए बबली जी और आगे क्या फरमा रहे हैं बबली जी।
2: हाँ जी, एक छोटा सा किस्सा और है शांता जी, ज्योति और उसकी आंटी का, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ सुनने वालों। ज्योति अपनी आंटी से बोलती है, कल से बहू और बच्चे की मालिश के 300 घंटा लूंगी। आंटी कहती है, आंटी क्यों ज्योति, अभी तक तो 200 लेती थी। ज्योति कहती है आंटी से, ज्योति आंटी फुर्सत नहीं है, दो घर और भी जाना है। तो आंटी बोलती है ज्योति से, आंटी तो दो घर जाने से रुपए बढ़ाने का क्या मतलब है, बल्कि मुझे तो 200 के हिसाब से और 400 मिलेंगे। ज्योति आंटी से कहती है, ज्योति देख लो आंटी, उनसे भी 300 के हिसाब से तय हुए हैं, आपको करानी है तो ठीक, नहीं तो कल एक तारीख है, मैं नहीं आऊँगी, किसी और से करा लेना। अब आंटी बेचारी क्या करे, अब आंटी कहती है ज्योति से, आंटी अरे अब बीच में किससे ढूँढूँगी, तू ही आ जा, जो कहेगी दे देंगे। ज्योति कहती है आंटी से, ठीक है अब तक का हिसाब कर दो, कल से नया 300 के हिसाब से चालू हो जाएगा। आंटी बेचारी क्या करे, आंटी दुखी मन से कहती है, यह ले 4 दिन के बाकी 800 रुपये, कल टाइम से आना।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि बबली जी, जो काम करने वाले इतना महंगाई हो गया है, महंगाई के बदौले में कितना दाम भी उड़ गया है, और क्या ऐसा शांता जी, क्या हॉलैंड में भी इसी प्रकार से है
1: महंगाई? तो हाँ, यो तो भी है, आप तो भी महसूस करते हो ना। सबसे प्रथम मैं कहूँगी कि यहाँ पे बेंजीन महंगाई है।
0: उसके लिए तो कहा जाता है कि साइकिल है और साइकिल लेकर निकल चलो।
1: साइकिल लेकर निकल चलो तो बहुत अच्छा है, गाड़ी को धर दो, उसको भी थोड़ा आराम मिलेगा, गाड़ी को आराम मिलेगा और हमारे तंदुरुस्ती तो बढ़ेगा अगर आप साइकिल से या पैदल चलोगे तो।
0: इन बातों पे, क्योंकि ये संदेश जो रखा जाता है और ज्योति का प्रकाश के हमारी खोजी सेना जो खोज खोज करके हम सबके लिए रखते हैं, तो इसमें ये संदेश है कि किस कितने ज़्यादा प्रकार से और लोग काम करना नहीं चाहते हैं पर पैसा ज़रूर मांगते हैं खूब जोर तोर से। मनीषा जी, इस पे आपके क्या ख्याल हैं?
2: संजय जी, मानना मेरा भी यही है कि काम करने वाले के लिए काम बहुत है और आराम करने वाले के लिए आराम के बहाने बहुत हैं। हाँ, महंगाई के बारे में इतना जरूर कहेंगे कि प्या सजन तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है।
0: इसी प्रकार से लोग काम में और व्यस्त रहते हैं पर फिर भी, यानी कि काम करने वालों को और मांग है पर काम करने वाले ज़्यादा आराम चाहते हैं ना मनीषा जी, ऐसे जैसे कि अभी आपने संदेश में रखे। तो क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, और मनीषा जी पहले आप अपना संदेश।
2: संदेश में एक व्यंग है कि बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स बाबा जी बन जाते हैं, बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स बाबा जी बन जाते हैं, लोग उसी बाबा के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। तो ये है आज की दुनिया और दुनिया की सच्चाई।
0: एक गीत की ओर हम बढ़ते हैं
2: जी, बिल्कुल।

0: सुनो वालों, कहा जाता है कि दरवाजे छोटा ही रहने दो, दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। दोस्तों, आज के संदेश में जो रखा गया बबली जी, जो अभी काम के बारे में, जो दुनिया में काम करो प्यारो, और उसके लिए नौकरी के लिए लोग और मांग करते हैं पर करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं उसे नौकरी नहीं मिल रहा, कभी ऐसा भी होता है ना मनीषा जी?
1: जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि हम अपने कीमती संसाधनों को युद्ध में बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें युद्ध करना ही है तो बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी और पिछड़ेपन के साथ करना चाहिए। जी संजय जी, इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: इस पर ये विचार है कि शांता जी पनेल के पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसा गीत खोज कर रखे हुए हैं, तो शांता जी क्यों ना वो गीत हम चला देते हैं।

सैया रे, अरे कमा कमा के मर गए सैया, पहले तगड़े तगड़े थे अब दुबले पतले हो गए सैया, अरे कमा कमा के मर गए सैया, मोटे सैया पतले सैया।

0: बबली जी ने बड़े अच्छे से बताया, हमें बेरोज़गारी के मुद्दा बताया, और इस खूबसूरत से गीत ने हमें महंगाई डायन पर बहुत कुछ बताया। धन्यवाद शांता जी इतना खूबसूरत गीत प्रस्तुत करने के लिए। और ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना रख गया कोई, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना रख गया कोई, अब वो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। कैफी आज़मी साहब के शेर के साथ आइए एक दूसरे सुंदर गीत की तरफ रुख करते हैं, और उससे पहले हम चाहेंगे कि संजय जी इस पर आपका क्या कहना है।
1: इस पर हमें यही कहना है कि क्यों ना आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें भी एक सुंदर सा गीत हुआ है। और शांता जी जो पनीर के पीछे बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो गीत हमें और हमारे लिए और चलाए।

वाहरे जमाने फितरत तेरी कमाल है, वाहरे जमाने फितरत तेरी कमाल है, बढ़ती महंगाई का ना कोई ख्याल है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है और उसी मजदूर की मजदूरी पर सवाल है।

ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप तो कभी हकीकत की छाया, कुछ खोकर पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की सही परिभाषा।

0: जी हाँ, सुनने वालों, आपको हम दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े थे ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में, और स्वीकार कीजिए यहाँ से सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।
1: तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, सफलता केवल उनको मिलती है जो धैर्य रखते हैं और कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपको अनुराधा का नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। हमारे आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा जी भारत से, और जा करके हमारे आचार्य सूरज देव जी और बबली आसरा जी और मनीषा जी, और हमारे पनेल के पीछे बैठे हुए हैं शांता खेमई जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और यही आशा रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक जरूर पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आज आप सबके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई हूं जो धर्मेंद्र जी के ऊपर है।

सुनने वालों, आप सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक इतने महान कलाकार थे कि मैंने सोचा आज उन्हीं की जीवनी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाऊं।

तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ सुनने वालों। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। वह 8 दिसंबर 1935 फगवाड़ा कपूरथला जिला में पैदा हुए। एक छोटे से गांव सानेवाल में पैदा हुए।

सुरेंद्र जी ने लुधियाना के लालटन कला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद वह एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुँचे।

धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक अभिनेता थे और इनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल भी अभिनेता हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी जिनमें शोले, धर्मात्मा, लोफर, यादों की बारात, फूल और पत्थर, जंजीर, बर्निंग ट्रेन, गुलामी, आग ही आग, तहलका, यमला पगला दीवाना जैसी कई हिट फिल्में दी जो एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है और उन्होंने ही मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। और उनकी अच्छी फिल्मों में चुपके चुपके, सत्यकाम, हकीकत, यादों की बारात भी शामिल है।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म थी ब्लैकमेल, और इसमें धर्मेंद्र जी और राखी गुलजार ने काम किया था। उस टाइम पे ये फिल्म चली और इसका गाना भी खूब चले, और धर्मेंद्र जी एक चॉकलेटी हीरो कहलाए। सब लड़कियाँ उनकी इतनी दीवानी हो गई क्योंकि वो इतने खूबसूरत लगते थे।

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा पर 6 दशक तक राज किया। 60 सालों के भीतर उन्होंने 300 से अधिक फिल्में की। शुरुआत में रोमांटिक हीरो तो फिर एक्शन हीरो के रूप में भी वे खूब सफल हुए।

0: के कैरियर की सबसे हिट और हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी फिल्म शोले में उनका वीरू का रोल आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की सुनने वालों कि उसके डायलॉग आज भी लोगों को याद आते हैं।
1: जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
2: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
3: वो
2: अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
1: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय।
2: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
1: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
4: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्तों? तुम यहाँ बैठे हो?
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो, तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया? देखो,
1: मेरा दिल भर चुका।
4: देखा, देखा तुमने?
5: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
4: क्योंकि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा। जो
1: इसलिए मैं जानते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
2: कैसी मुसीबतें आएंगी?
1: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, buddha going in jail, buddha chakki pissing.
2: अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
4: अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी?
1: अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जानते करूंगा। एक, दो, तीन।
4: मौसी, मौसी हाँ कह दो ना।
6: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
4: अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
6: हाँ कह दो मौसी।
4: हाँ, जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
2: मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
1: मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से?
4: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
1: अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा।
0: सुनने वालों, अभी आपने ये जो डायलॉग सुना, ये फिल्म शोले से लिया गया, और ये मौसी वाला डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज जब भी शोले का नाम लिया जाता है तो लोग इस डायलॉग को खूब पसंद करते हैं। सुनने वालों, अब मैं आगे चलती हूँ। सुनने वालों, धर्मेंद्र को किस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया? 1960 के दशक में वह दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार के बाद तीसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। उन्होंने उस दशक में 15 हिट फिल्में दी और 25 सफल रहे, जिसमें फूल और पत्थर धर्मेंद्र जी की सुपरस्टार बना दिया।

मिंदर जी ही मैन के नाम से मशहूर हुए। उन्हें पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1964 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी, यह अरेंज मैरिज थी।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं, जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से ईशा देओल और अहाना देओल हैं। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अभिनेता हैं, जबकि बेटियां विजेता, अजीता, अहाना फिल्मों से दूर रहती हैं। एक बेटी ईशा देओल फिल्मों में काम करती थी।

धर्मेंद्र जी ने 1980 में जब हेमा मालिनी से शादी की तब वो शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी जिनसे 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उन दिनों ऐसी अफवाहें फैली कि एक्टर ने इस्लाम धर्म अपना कर हेमा जी से निकाह कर लिया।

बॉलीवुड के एक्शन किंग के नाम से मशहूर अभिनेता निर्माता धर्मेंद्र ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जो 1960 में बनी थी उससे की। इसके बाद वह फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका में नजर आए।

धर्मेंद्र जी की कुछ अन्य फिल्में हैं अनपढ़, जिसमें उन्होंने माला सिन्हा, बलराज सहनी और बिंदु जी के साथ काम किया,

सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि उस ज़माने में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत हिट हुई और उनकी फिल्में भी खूब हिट हुई, जैसे शोले, आसपास, सीता और गीता, जो भी उनकी फिल्म आती, ड्रीम गर्ल, चरस, इन सब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और वो सब फिल्में हिट साबित हुई सुनने वालों।

उस समय धर्मेंद्र जी की जोड़ी सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं, राखी गुलजार, आशा पारेख, अनीता राज और भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ हिट हुई, और सबसे पहले तो उनकी फिल्म मीना कुमारी जी के साथ बहुत हिट हुई थी। धर्मेंद्र जी ने अगर शुरू में बहुत सारी हिट फिल्में दी तो आखिर भी उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी। जैसे 1990 से 1992 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहराम, तहलका शामिल है, जो एक मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी हिट फिल्में साबित हुईं।

24 नवंबर 2025 को इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, जो एक कम 90 साल के थे।

धर्मेंद्र के एक भाई भी थे और वो उन्हीं की तरह एक्टर थे। धर्मेंद्र के भाई का नाम अजय सिंह देओल था और उन्हीं के बेटे हैं अभय देओल, वो भी फिल्मी एक्टर हैं।

सुनने वालों, ये जो अभी आपने गीत सुना, ये फिल्म दो चोर से लिया गया। इसमें धर्मेंद्र जी और तनुजा ने काम किया। धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है 21, जो एक वार ड्रामा है और जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मेंद्र जी का निधन फिल्म की रिलीज से पहले ही हो गया और वो इस फिल्म को नहीं देख पाए। सुनने वालों,

अपने निधन से पहले धर्मेंद्र जी अपने फार्म हाउस में रहते थे सुनने वालों, और वहीं पे वो थोड़ी खेती बाड़ी करते और ताज़ी ताज़ी फल सब्जियां उगाते और उसी को ज़्यादातर वो उपयोग में लाते थे। अब बॉम्बे वाले घर में वो थोड़ा कमती रहते थे क्योंकि फार्म हाउस में खुली हवा, खुला वातावरण उनको काफ़ी पसंद आता था सुनने वालों।

फिल्म यमला पगला दीवाना 2011 में प्रदर्शित हिंदी हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने काम किया। सुनने वालों, धर्मेंद्र जी ने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया। 1990 के दशक में उनको एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसी भूमिका में उनकी पहली फिल्म थी सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें उन्होंने सलमान खान, काजोल और अरबाज खान के साथ काम किया।

उनकी अन्य फिल्में हैं कैसे कहूँ के प्यार है, किस किस की किस्मत, लाइफ इन मेट्रो, जॉनी, गद्दार। 2023 में उनकी फिल्म आई करण जौहर की रॉकी और रानी, जिसमें उन्होंने शबाना आज़मी जी के साथ काम किया।

धर्मेंद्र जी ने हिंदी के अलावा पंजाबी और बंगला फिल्म में भी काम किया है। सुनने वालों, राजनीतिक, धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। धर्मेंद्र जी ने फिल्मों का निर्माण भी किया। सुनने वालों, 1983 में धर्मेंद्र जी ने विजेता फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम पर रखा। 1983 में रिलीज़ हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को मुख्य भूमिका में लॉन्च किया। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी देओल ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसे संपूर्ण मनोरंजक प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1995 में धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लॉन्च करने के लिए बरसात फिल्म का निर्माण किया, जो उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज तक यह पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें नए कलाकारों को लिया गया था।

सुनने वालों, अभी मैंने आप सबको थोड़ा सा धर्मेंद्र जी के बारे में बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे फिर अगली बार कुछ और बताने की कोशिश करूँगी सुनने वालों।

जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

मैं हूँ संजय और कुछ ना कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो हिम्मत जो है तो वैक्सीन का क्या।

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

जैसे कि अभी आपने सुने। नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

क्योंकि कहा गया कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

ऐसे आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्दों जरूर कहते हैं। छोटे छोटे शब्दों है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है। सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छे हो तो।

ये भी हम जानते हैं कि जीवन भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह। ये संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? कहते हैं कि लोग और वक्त और हालात। तो कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोग, वक्त और हालात।

तो कहते हैं कि जीवन के पथ प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। याद रखो, कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट और बर्दाश्त करनी पड़ती है।

इस बात को जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है, और याद रखो पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

मन की सोच सुंदर हो तो मन की सोच जब सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। और मन की सोच जो सुंदर ना हो तो जब सुंदर ना हो तो मैं ये आपके ऊपर रख देता हूं।

क्योंकि एक ना एक दिन तो कहा गया है कि हम कहानी बन करके रह जाएंगे हम सब। एक ना एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब। बस कोशिश रहे कहानी अच्छी हो।

और दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं। क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो, और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है। उम्र बिना रुके सफर कर रही है, और हम क्या करते हैं? हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? क्योंकि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है। आप हमारे पास जरूर स्टूडियो में आ सकते हैं। हम तो हर वक्त चाय तैयार रखते हैं। आपके ही मुलाकात की फुर्सत नहीं।

क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और हमें क्यों टाइम नहीं है? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां और घेरे हुए और जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

सुनाए थे, मैं हूं ना। ये तीन छोटे छोटे शब्दों छोटे शब्दों आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द जो किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

क्योंकि खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। और आप किसको भरोसा कर सकते हैं?

संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।

दोस्तों इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

क्योंकि कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का, तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं, वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

धीरे धीरे ही सही, पर सब हासिल होगा, जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं, क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

जैसे कि अभी आपने सुने। मां बाप कभी गलत नहीं होती, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

पे जरूर ध्यान देना। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

कहे गए हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। अंदर से एक मजबूत फैसले उसका जरूरत जरूर होता है।

हो सके तो, हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

क्योंकि इस बात को भी याद रखना, हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है। हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जीप पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं। गुरु जी ने इस बात को कहे थे, पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

क्योंकि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

बचता है क्या? बचता है कि सबर करना सीख लो, सबर करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

चित्र और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पुत्र मित्र चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

और दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे। कि हम गलती नहीं करते, क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है अपनी नहीं।

बुजुर्गों ने कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

यहाँ तक हम आपके साथ दिए कुछ समय तक यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा, सुनते रहना फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

साथियों, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना है कौन ये वक्त ही बताता है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। और मित्रों, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आप जैसी दोस्त की याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती।

मित्रों, इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी कम हो गई। मित्रों, दुनिया की रैन बसेरा में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस ये ही जीवन का गहना है।

साथियों, मदद करना सीखिए फायदा के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। और मित्रों, शंकर का अर्थ है शं यानी मैंने, कल्याण, कर यानी मैंने, करने वाला, मतलब शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला।

साथियों, मदद करना सीखिए फायदा के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। और मित्रों, शंकर का अर्थ है शं यानि मैंने, कल्याण, कर यानि मैंने करने वाला, मतलब शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया। पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़ कर जाना है, इज्जत, इज्जत और ये गंवाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

वक्र टुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुर्मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

आकाशवाणी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जिसे हम जुड़ गए हैं आपके साथ औख्तन प्रोग्राम लेकर। सभी जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो। जिस परिवार में नया मेहमान आए है उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनके घर पे आज कार्य है उनके घर से और जो भी शुभ कामनाएं को प्रस्तुत किया जाता है। जिनके सालगिरह है आज उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है और जो हमारे देश में वेकेशन से आए हैं उन्हें हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और ये कहना चाहूँगा ये दुनिया के उन देशों में से एक देश है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। को हार्दिक से और स्वागत किया जाता है। जो अपनी नौकरी की ओर तैयारी कर रहे उन्हें हम कहेंगे कि आप अपना दिल लगाकर काम करना। ये ना समझना कि जो हमारे मालिक होते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। गांधी जी ने एक अच्छा सीख दिया था कि ये मत सोच कि तुम्हारे लिए वो क्या कर सकते हैं, ये सोच कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों जो अभी स्कूल के ओर और जाने वाले हैं या निकल भी चुके हैं तो उन्हें ये कहूँगा कि माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करना। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। जो हमें बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले

प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, लखबीर सिंह लखा के आवाज़ में हम सब सुने ये सुंदर सा गीत, जो सुंदर सा भजन जो माता का लखबीर सिंह लखा के आवाज़ में सुनने वालों। हम और भी गीतों जो लखबीर सिंह लखा के और गाए हुए हैं अभी उस ओर हम बढ़ेंगे।

ना किसी से अपेक्षा, ना किसी की अपेक्षा, सफल जीवन हेतु करे निरंतर स्वयं की समीक्षा।

कि हे प्रभु, मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजा आ सकूं। मुझे ऐसी शुद्ध बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटनों के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं। सौ साल जियो या पचास साल, ये आपकी मर्जी है।

है कि मेरी अर्जी तो सिर्फ इतनी ही है कि जब तक जीव जिह्वा पर आपका नाम रहे। देने में मेरी हाथ कभी थके नहीं, ऐ मेरी मालिक प्रेम से भरी हुए आंखी देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना और सत पर अव चलते हुए पांव देना।

भी मांग करते हैं कि सिमरन करता हुआ मन देना, हे प्रभु अपने बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि देना। अपनी सद्बुद्धि देना, पल पल साथ रहना प्रभु,

किस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा और समझो जरा। कंचन सी काया को पाए हो तुम, सोचो जरा समझो जरा। आने के बाद जाना भी है, जाना कहाँ पहचाना भी है। निजगर को अपनों भुलाए हो तुम, सोचो जरा समझो जरा। पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे हो अभिमान को। दो पेड़ी पाओ टिकाए हो तुम, सोचो जरा समझो जरा। दुनिया का हर सुख तो मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान बिन पर तू पछताएगा। फिर भी न खुद को जगाए हो तुम, सोचो जरा समझो जरा। अब तो इन संतों का कह मान लो, आके पूरे गुरु से ब्रह्म ज्ञान लो। आज ऐसे मौके पर आए हो तुम, सोचो सरा और समझो सरा।

सुनने वालों, ये औक्तन प्रोग्राम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है तनहा शहर से।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। सूर्य उगने से पहले हमें अपना जल अर्पित किया जाता है, ये संतों ने कहा है।

जगत गुरु का कहना है कि रोज सवेरे जल अर्पित करने से आप 6 महीना के अंदर अंदर में आपके जीवन में प्रभाव आ जाएगा।

जो अभी चुन किए हैं फाउन रेडियो पे, तो उन्हें भी गुड मॉर्निंग कहा जाता है। सुप्रभात।

सुनने वालों इस बात को भी गौर करें, इस बात को भी गौर करें कि धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है, लेकिन मित्र हमेशा के लिए धन ही होता है।

सुनने वालों, ये पहला भाग जो औक्तन प्रोग्राम का, मैं आपके साथ अभी तक जुड़ा हूं और सुंदर भजन जो अनूप जलोता जी के आवाज में घाटू श्याम, अगर आप अभी दर्शन नहीं किए होंगे तो जरूर कोशिश करके और जा करके दर्शन कीजिए। हम अभी अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

सुनो वालो, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है जो डेनहाग शहर से, हॉलैंड देश से और ब्रॉडकास्ट किया जाता है। चाहे गर्मी या सर्दी, हर समय रहता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आपके साथ। मैं हूं संजय और कुछ समय तक मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा।

बच्चे मन के सच्चे, ये सुंदर सा गीत जो फाहुन रेडियो द्वारा आपको सुनाया गया। आपको एक शुभ दिवस, एक ऐसा दिन हुए जिसमें ना सिर्फ आप अपने आप के लिए, कम से कम अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तों, नाते के भूलना नहीं। हम अगले गीत जो चुन करके रखा है, 1981 में निकाला गया ये फिल्म, जो कुछ उस समय पे और ये फिल्म को देखे होंगे,

कुमार गौरव और विजयता पंडित ने इस फिल्म में काम किए। 1989 के ये फिल्म, जो फिल्म का नाम लव स्टोरी से निकाला गया है, ये सुंदर सा गीत। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगले गीत का बोल क्या है कि अभी तो कोई गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गए हैं तो उसके लिए क्या होना है। कहते हैं बात बिगड़ जाए तो क्या होगा,

जीत का बोल जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर पल आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती है। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगला गीत जो खुशियों से भरे हुए है,

ये सुंदर सा गीत जो कॉन्सर्ट में गाया गया और ख़ास करके गाया गया तो हमारे अनाउंसर साथी शांता खेमई जी और उनके आवाज़ में हम सब सुने। दोस्तों ये बात है कि आज अगर हर पल का आनंद ले, हर पल का आनंद ले, खुशियाँ कभी इंतज़ार नहीं करती है। इस पर ध्यान देना कि हर पल हमें आनंद ही आनंद लेना है, खुशियाँ कभी इंतज़ार नहीं करते हैं। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना। और खुशियाँ कभी बताकर भी नहीं आते हैं और जाते हैं।

आना जाना का जब बात हुए तो क्यों ना हम उसे संगीत में सुनते हैं।

ख्वाब में जो कुछ लोग याद रह जाते हैं और उनमें से कुछ लोग को भूल जाते हैं।

गुलजार जी ने बहुत अच्छे लिखे हैं कि हंसते रहेंगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलता। हंसता रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलती। सुनने वालों, जैसे कि मैं देख रहा हूं, हमारा कुलेखा साथी स्टूडियो 2 में उपस्थित हो गए हैं।

आज एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम थोड़ा से हंसिए, क्योंकि जैसे गुलजार जी ने लिखे हैं कि आंसुओं का जगह आंखों में भी नहीं रहता है, वो भी टपक जाते हैं।

की तमन्ना लता मंगेशकर जी और किशोर जी का आवास में हम सब इस गीत को सुनेंगे।

तन्ना की तमन्ना एक फिल्म जिसमें देवानंद जी और सीनत अमन ने अपने काम दिखाए। ये सुंदर सा गीत जो लता मंगेशकर जी और किशोर जी ने अपना आवाज दिए।

तुझे देख कर मेरा दिल खोने लगा, ये सुंदर सा गीत को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ता निभाते हैं और शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। बस यहाँ तक था हमारे कार्यक्रम, जो यहाँ से कार्यक्रम हमारे कुलेखा साथी जो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, मैं यहाँ से आपसे विदाई लेंगे। आशा ये रखता हूँ कि सुबह से मैं आपके साथ जुड़े आ रहूं सुंदर सुंदर और भजनों के साथ। फिर

कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। अनफाइन अदाख्तु खवेंस।

फिर कोई पछताएगा। जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए। कोई था उन पे निसार हो गया जी, प्यार हो गया प्यार हो गया हमें, प्यार हो गया प्यार हो गया। राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाह।

शिशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फिल्म दिल देखे देखो, उसी मशहूर फिल्म से ये सुंदर सुंदर गीत आप सुन रहे हैं। मन में विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते।

हो साथिया हो बेलिया सुना दी आपको लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र ना लगे आपको, किसी की नज़र ना लगे, लगे तो बस लंबी उम्र की दुआ लगे आपको।

सफ़र छोटा ही सही, सफ़र छोटा ही सही, मगर यादगार होना चाहिए। और रंग काला ही सही, मगर वफादार होना चाहिए।

फिल्म ब्रह्मचारी रफी जी की आवाज में एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, पर इसे साबित करने के लिए अपना समय मत बर्बाद करना।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म का नाम कारवां। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, हे ईश्वर जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, देकर और जो कुछ ले लिया है

जी करता है बस सुनते ही रहे कि जब से तुम्हें देखा है आँखों में तुम ही तुम हो। रफ़ी और आशा भोसले जी ने सुना दी फिल्म का नाम घराना, और इस फिल्म में जो अपना किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार जी और आशा पारेख। कभी कभी

सोचते रहते हैं कि हम क्या थे और कहाँ आ गए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। समय वक्त हमारे हाथ में नहीं है, देखते देखते हम बचपन से कब दीनार हो जाते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और दीनार होने के लिए भी बड़ा सौभाग्य होता है, हर किसी को ये नसीब भी नहीं होता है। तो आप एक नसीब वाला है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जीवन हंसते में खुशियाँ में बिताते रहे। हर एक पल का जरूर से

हे मीतना मिला रे मन का फिल्म अभिराम अभी फिल्म अभिमान से। और इसमें आपको पता है अमिताभ बच्चन स्टार कास्ट और जया भादुरी जया बच्चन जो आज हैं। कहते हैं कि सुख खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जी हाँ खुशी हजार मिलेगी, खुशी ज़रूर से मिलेगी। और एक बात ये भी है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिल जाएगा।

क्या कमाल है कि तुम हो वही दिलरुबा, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं ना वो मंजिल भी पा लेते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ता भी इंतज़ार करते हैं।

तो कश्मीर नहीं है, यहाँ तो हम देनहाग में रहते हैं, हॉलैंड में रहते हैं। फिर भी ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है। दर्द के बारे में, दर्द दर्द दर्द सबको बदल देता है, दर्द सबको बदल देता है। कुछ कुछ शांत हो जाता है तो कुछ खतरनाक हो जाता है।

लता जी के आवाज में फिल्म अभिमान। दिल छू गए आज के इस सुबह की कार्यक्रम में पेश किया जाता है सुनने वालों। और कहते हैं, साफ नीयत से मांगा गया तो खुदा नसीब से बढ़कर देता है, बल्कि साफ नीयत होना चाहिए। कहते कि मुस्कुराने से मुश्किल कम होते हैं, मुस्कुराने से मुश्किलें कम होते हैं, मिलकर सबसे रहिए। मैं भी कहती हूँ कि मिलकर सबसे रहिए, पर दब कर किसी से मत रहिएगा।

कितने अच्छी पुकार है कि बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, या अपने ही सनम है तो पर्दा किस बात की है ना। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लेकिन मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

ये रह गए और प्यार हो गया। कभी ये सोच कर, कभी ये सोच कर कमज़ोर मत पड़ना, कभी ये सोच कर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले ही हो। मलिक हमेशा ये सोच कर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हैं।

0: ने कह कहते हैं कि मैं आ रही हूँ, बस प्यार हो ही जाता है, सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। फिल्म शक्ति से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और प्यार करते करते सुनने वालों, हम भी समय थोड़ा से
1: en informatie bij VAHON Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie bij uw enige VAHON Hindustani Radio. मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे सुनने वालों दोस्तों। मर्यादा रखना यानी कि लिमिट में रखना, लिमिट में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पैसा की कमी हो तो खर्चा करने में, और ज्ञान की कमी हो तो चर्चा करने में। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तो फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भी भूल गया।

دانو دو پریمی دنیا چور چلے فلم کا نام اجنبی. लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी. लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी. ये नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी. अंदाज ऐसे रखो मेरे प्यारे, अंदाज ऐसे रखो कि कोई अंदाज़ा ना लगा पाए.

कितने सुंदर कितने प्यार भरे कि तेरे बिना जिया जाए ना। लता जी से और किशोर दा जी के आवाज़ में आर डी बर्मन स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए। आर डी बर्मन के साज और संगीत में ये सजाए हुए सभी गीत आपने सुने। सुने वालों, अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं यार कि दिल तोड़ कर कहते हैं कि खुश रहो। कुछ जानी पहचानी है ना कि दिल तोड़ कर कहते हैं खुश रहना। और फिर ये अच्छा हुआ लोग बदल गए कि अच्छा हुआ लोग बदल गए।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्र रो मिलने का मौका नहीं पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो हम सब प्रारंभ करने वाले हैं। कार्यक्रम में पहले शांता जी एंट्री लेते हैं, फिर बबली जी, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: जिंदगी में कभी कुछ खत्म नहीं होता है, जिंदगी में कभी कुछ खत्म नहीं होता, हमेशा एक नया शुरुआत इंतजार में रहता है। तो आप सभी को भी यहाँ से सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम, और आपको हार्दिक से स्वागत है इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए, उसका नाम है बंधन। जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे, उसका नाम है संबंध। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
3: तो यहाँ से राजेंद्र जी जो जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, वो भी सहयोग दे रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका एंट्री।
4: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस बार भी हम उपस्थित हुए हैं अपने कार्यक्रम लेके। जैसे कि सब लोगों को विदित है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ही उत्साहित और 128 देशों में सुनाया जाता है। इस बार भी हम वही कार्यक्रम लेके ज्योति का प्रकाश में कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। और आज जो हमारा कार्यक्रम का शीर्षक है वह है हर दिन पावन, यानी कि हर दिन जो है पावन, यानी कि बहुत ही विशाल, हर दिन विशाल दिन है। तो आज का दिन है 8 जून की जो बात है, 1716 बलिदान दिवस, बंदा बैरागी का बलिदान दिवस है, उस विषय में बात रहेगा।
0: तो राजेंद्र जी, ये बात हो जाता है, सर्वप्रथम आपको स्वागत किया जाता है जो भारत से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में, और संदेश विषय आपने रख ही दिए हैं, पर क्यों ना हम हर सप्ताह के तरह जो गीत पहले रखते हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, जो उदास अभी घर पे बैठे हुए है ना।
4: हाँ, उनको उदास नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उनके लिए हो जाए।
0: तो चला देते वही गीत जो हम सब हर सप्ताह कार्यक्रम में रखते हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार।
4: जरूर।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो दोस्तों, हमें डरना किस बात का है, क्योंकि आज का जो विषय है, हमारे मास्टर जी जो भारत देश से और ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, श्रीमान राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी, अगर आपके कोई इतराज ना हो तो हम सब थोड़ा से जो आज का विषय है उस ओर बढ़े।
1: हाँ, जरूर उसी ओर बढ़ना चाहिए और हम उसी ओर की ओर अग्रसर है, और जो आज का विषय है उसी के तरफ आगे बढ़ते हुए। आज का विषय बहुत ही अच्छा है कि बलिदान दिवस के बारे में बातचीत रहेगी। तो बलिदान किसका, 8 जून 1716 ईस्वी को बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन बंदा बैरागी का बलिदान हुआ था। तो बंदा बैरागी कौन था, इस बारे में बातचीत है।
0: बस
1: बंदा
0: यही
1: बैरागी का जी
0: नहीं, बस यही ये संदेश हम लोगों को सुनना है।
1: हाँ, बंदा बैरागी का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को ग्राम तच्छल किला पुंछ में श्री रामदेव के घर में हुआ। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। युवावस्था में शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरणी पर तीर चला दिया। इससे उसके पेट से एक शिशु निकला और तड़प कर वहीं मर गया। यह देखकर उसका मन खिन्न हो गया। उन्होंने अपना नाम माधोदास रख लिया और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अनेक साधुओं से योग साधना और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी दौरान गुरु गोविंद सिंह जी माधोदास की कुटिया में आए। उनके चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। उन्होंने इस कठिन समय में माधवदास से वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त मुस्लिम आतंक से जुड़ने को कहा। इस भेंट से माधवदास का जीवन बदल गया। गुरुजी ने उसे बंदा बहादुर नाम दिया। फिर 5 तीर 1 निशान साहिब, 1 नगाड़ा और 1 हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। बंदा हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था, बंदा बहादुर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। तो क्यों ना एक सुंदर सा बलिदान का गाना हो जाए इसमें।
0: जरूर राजेंद्र जी, सुंदर सा, और खास करके देश प्रेमी थे ना,
1: बहुत ज्यादा,
0: क्योंकि एक देश प्रेमी थे। और हम सब भारत जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और जरूर कुछ कुछ ऐतिहासिक बातें हम सबको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम सब कोशिश करते हैं कुछ संदेश रखने के लिए। तो जरूर, जैसे कि आपने कहा है कि एक सुंदर सा गीत की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। सुनने वालों, सुंदर सा गीत जो फिल्म क्रांति से निकाला गया।

0: सुनने वालों, यहाँ तक जो हम सब फिल्म क्रांति से निकाला गया वो सुंदर सा गीत और रखे गए, तो मास्टर जी ये तो बताइए क्रांति किसको कहते हैं?
1: क्रांतिकारी वो व्यक्ति होता है जो अत्याचार और उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्रांति के सक्रिय रूप में भाग लेता है। यानी कि जब लोग कुछ अत्याचार करने लगते हैं एक दूसरे के, तो कोई एक व्यक्ति निकलता है उसमें से जो उनके विरुद्ध काम करता है, उसको क्रांति बोलते हैं, या उसकी वकालत करे, ये जो गलत करते हैं उन लोगों की वकालत करे, या खुद तलवार लेके उसको विपक्ष में उतर आए, उसको क्रांतिकारी बोलते हैं।
0: तो मास्टर जी ये तो बताइए कि भारत में वैसे तो कितने क्रांतिकारी हुए होंगे ना?
1: हाँ, हजारों क्रांतिकारी भारत में हुए हैं, लेकिन कुछ सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनका कि नाम ये बड़े अच्छे शब्दों में, मोटे शब्दों में लिखा जाता है, उनको उनकी एक लिस्ट है क्रांतिकारियों की, उनकी बड़ी सूची है। वो कभी पूर्णता के मानकों को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ जो क्रांतिकारी है उनमें से कुछ लोग हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुखदेव जी है, राजगुरु है, बटुकेश्वर दत्त है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, लाला राजपत राय जी है, वीर सावरकर है, भीमराव अम्बेडकर जी है, मोहनदास करमचंद गांधी जी है, भगत सिंह है, राजू सिंह चौहान है, मंगल पांडे है, राम प्रसाद बिस्मिल है, शिव सागर है, सुखदेव है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जॉर्ज वाशिंगटन है, मार्टिन लूथर है, ये सब लोग, शेख मुजरदिमान है, सिमोल बोलिवे, वाल्दिमीर लेनिन है, ये क्रांतिकारी लोग हुए, आशा फाकुल्लाह खान है, और लास्ट में जो क्रांतिकारी है उनका नाम बटुकेश्वर दत्त है।
0: तो ऐसे इतने ज्यादा, यानी कि सभी बड़े बड़े और काम किए अपने देश खास करके, कितने ज्यादा तादाद में अपने आजादी के लिए ना?
1: हाँ, क्रांतिकारी का मतलब है कि सभी, मैं तो सभी से यही कहूंगा कि क्रांतिकारी यानी देश के लिए अपने प्राणों की जो आहुति देने से है वो क्रांतिकारी है, अपने देश के लिए अपने प्राण जिन्होंने दे दिए वो क्रांतिकारी है। जैसे शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए उन्होंने देश हित के लिए अपनी जान न्योछार कर दी थी, धन्य है ऐसे महान बेटे और माँ जिन्होंने ऐसे महान बेटों को जन्म दिया। जितने क्रांतिकारी हैं मैं उन सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ।
0: हृदय से प्रणाम। पर राजेंद्र जी कुछ प्रश्न और हो जाता, क्योंकि यहाँ बबली जी बैठे हुए हैं और शांता जी जो बैठे हुए हैं, तो क्यों ना दो चार शब्द इसके बारे में और हो जाए। तो कहने के तात्पर्य ये है, जब ये फिल्म जो अभी हम सब गीत चलाए ना क्रांति फिल्म का, तो ये निकला था तो हम लोग का सूरीनाम में स्वार्थवेत तेलफिशी होते थे ना शांता जी?
2: हाँ, बिल्कुल।
0: पता नहीं बबली जी आपके पास उस टाइम पे कलर हो गया था कि नहीं?
3: नहीं, हमने तो ये सिनेमा हॉल में देखे थे।
0: सिनेमा हॉल में देखे थे। तो ये तो इन यार नेखंतीन 1981 में बनाया गया ना ये फिल्म
1: जी,
0: बड़े बड़े एक्टरों के लेकर के, और ये एक मनोज कुमार का प्रोडक्शन था।
3: दिलीप कुमार जी, निरूपा राय, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रवीण बॉबी, हेमा मालिनी,
0: सभी बड़े बड़े एक्टरों के साथ। पर मैंने इस बात को भी सुना है, क्योंकि ये संदेश जो एक स्पीच जो मनोज कुमार दे रहे थे कि उन्हें उस समय पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, तो उन्होंने मनोज कुमार को बुलाया और कहे कि क्रांति के बारे में एक ऐसा फिल्म बनाओ, क्योंकि मनोज कुमार ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाए थे, जैसे रोटी कपड़ा मकान, पूर्व पश्चिम और
3: उपकार,
0: उपकार, ये इन फिल्मों को तो बड़े बड़े फिल्म, यानी कि बड़े पर्दा के लिए इन्होंने बड़े बड़े फिल्मों बनाए थे। तो इंदिरा गांधी जी ने इन्हें और इसे फिल्म बनाने के लिए आग्रह किए थे।
1: हाँ।
0: तो 1981 में ये फिल्म को रिलीज हुआ, और हमें ये बात भी ख्याल है कि हम लोग सूरीनाम देश में ये फिल्म को देखे थे। मगर उस समय पे एक फिल्म जब टेलीविजन पे रखा जाता था तो आधा आज और आधा दूसरा दिन देखा जाता था।
1: हाँ।
0: ऐसा होता था
1: जी।
4: हाँ, कारण ये था कि अगले अगले रोज हमको स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए आधा आधा देखना पड़ता था।
0: इस कारण आधा देखना पड़ता था। और बबली जी आपने इस फिल्म को देखे तो सिनेमा हॉल में उस समय पे, तो कुछ उसके बारे में बताइए
3: ना कि फिल्म इतनी अच्छी लगी कि किसी किसी सीन में तो उस समय रोना भी आ गया था
0: किसी किसी सीन में। तो राजेंद्र जी जरूर हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को लेकर के और जो आज का विषय है उस ओर के ओर बढ़ते हैं।
1: मनोज कुमार जी की जो फिल्म क्रांति थी वो फरवरी 1981 में रिलीज हुई थी
0: जी।
1: देशभक्ति की इस फिल्म ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था
0: बहुत।
1: मनोज ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था सलीम जावेद और संतोष कुमार के साथ लिखने वाली टीम भी रहे और एक्टिंग भी की थी मनोज कुमार ने इसको।
0: राजेंद्र जी संतोष कुमार वो एक राइटर था कि सॉन्ग राइटर?
1: संतोष कुमार के साथ लिखने वाली टीम में भी रहे।
0: जी जी जी जी अब समझ गया।
1: और इनके टीम में लिखने वाली टीम में भी रहे, दोनों चीज में रहे।
0: ऐसा
1: जी,
0: तो इसी कारण ये फिल्म भी खूब चला था। और
1: बड़ा जबरदस्त
0: कुछ बबली जी कहना है?
3: जो संतोष कुमार जी हैं उनकी ज्यादातर मनोज कुमार की फिल्मों में गाने होते थे।
0: ऐसा?
3: हाँ जी।
0: तो क्यों ना हम अपना संदेश की ओर बढ़ते हैं राजेंद्र जी।
1: हाँ जरूर, हमारा संदेश यहाँ तक पहुँच गया था कि उन्होंने नवाब से बदला लेने को कहा था। बंदा हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा, फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया बंदा बहादुर ने उनको भी नहीं छोड़ा। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। उनके पराक्रम से भयभीत मुगलों ने 1,000,000 फौज लेकर उन पर हमला किया और विश्वासघात से 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया। उन्हें लोहे के एक पिंजड़े में बंद कर हाथी पर लाद कर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। उनके साथ हजारों सिख भी कैद किए गए थे, इनमें बंदा के भी वे 700 साथी भी थे जो प्रारंभ से ही उनके साथ थे। जब हजारों सिख इसमें कैद किए तो 740 वीर बंदा बैरागी के साथी वो भी इसमें थे।
0: ऐसा?
1: युद्ध में वीर गति पाए सिखों के सिर काट कर उन्हें भाले की नोक पर टांग कर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गरम चिमटों से बंदा बैरागी का मांस नोचा जाता रहा। काजियों ने बंदा और उसके साथियों को मुसलमान बनने को कहा पर सबने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिल्ली में आज जहां होर्डिंग लाइब्रेरी है वहां 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन 100 वीरों की हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है। बंदा ने सीना फुलाकर सर्वज्ञ उतार दिया यानी सब कपड़े उतार दिए। मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परमपिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार से दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो आप मेरे जैसे किसी युवक को धरती पर भेजता है। बंदा से पूछा गया कि वह कैसे मौत मरना चाहते हैं तो बंदा ने उत्तर दिया मैं अब मौत से नहीं डरता क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। यह सुनकर सब और सन्नाटा छा गया। भारतीय भयभीत करने के लिए उन्हें 5 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में लेटाकर बंदा के हाथ में छुरा देकर उसको मारने को कहा गया। बंदा ने इससे इनकार कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर उसके दिल का मांस बंदा के मुंह में ठूंस दिया। पर वे तो इन सबसे ऊपर उठ चुके थे। गर्म चिमटे से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां शेष थी। फिर भी 8 जून 1716 को उस वीर को हाथी से कुचलवा दिया गया। इस प्रकार बंदा वीर बैरागी अपने नाम के 3 शब्दों को सार्थक कर बलिदान बलिपथ पर चढ़ दिए। इस प्रकार बंदा वीर बैरागी ने बहुत ही इस देश के लिए भारत देश के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर दिया और कितना सहा आपने सुना ही है। और मुगलों ने जो अत्याचार किए थे जब हिस्ट्री में जाते हैं अत्याचार की बात सुनते हैं तो बहुत ही दुख होता है इन सब चीजों से।
0: जरूर, क्योंकि ये कितना भयानक रूप से और ऐसा हुआ ना राजेंद्र जी।
1: हाँ,
0: आज तो हम सब इसके बारे में बस इतिहास में पढ़ के और एक दूसरे के साथ इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, पर एक ये कितना मुझे सुनते हुए ऐसा लग रहा कि कितना मुसीबत से वो हुआ होगा, कितना बेरहमी से ये क्रांतिकारी ये तथा ये ऐसा जो अपने देश के लिए अपने अपने समाज के लिए जो ऐसा काम किए, तो देखो कितना बलिदान लोग दिए है ना।
1: हाँ, आजादी के लिए लोग इतना बलिदान दिए, अपने बच्चों को दीवार पे चिनवा दिया, मार दिए गए, ऐसे ऐसे मुगलों ने बहुत अत्याचार किए और फिर भी इस देश के लिए अपने देश के लिए लोगों ने बलिदान दे दिया, उन्हीं को तो क्रांतिकारी कहते हैं। गोविंद सिंह का जन्म दिवस जो है बहुत ही जोर शोर से हमारे पंजाब में मनाया जाता है, खासकर पंजाब में, पूरे देश में मनाया जाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है, एम्बेसियों में भी मनाते थे दिल्ली वहाँ पे नीदरलैंड्स में, और पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब खास करके इस क्योंकि वहाँ पे सारे सिख लोग हैं और वो इस दिन को बहुत ही जोर और शोर से मनाते हैं और आगे भी मनाते जाएंगे, हम लोग भी मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं। तो इस प्रकार के जो महापुरुष हुए हैं उनका जन्म दिवस बड़े जोर शोर से और उल्लास से मनाया जाता है, क्यों ना एक सुंदर सा नगमा चला दिया जाए।
0: गीत का बोल फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और वो गीत को इस समय प्लेयर पे रखता हूँ।

0: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये सुंदर सा गीत है जो हम सब रखे आपके लिए दोस्तों। और ये फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो है, इसका जो कार्यक्रम हमारे जो ज्योति का प्रकाश, इसका लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है ना, उसमें थोड़ा और प्रकाश आ जाए। तो राजेंद्र जी, आप कुछ और कहने वाले थे या?
1: जीवन का जो ज्योति है वो कुछ ना कुछ अच्छी बातों से ही जल सकता है। जब हम लोगों की सोचने की शक्ति और पॉजिटिविटी, यानी कि हम लोग सब लोगों के प्रति अच्छा सोचे और अच्छी बात करें, तो जीवन की ज्योति में प्रकाश आ ही जाता है। जिस प्रकार अंधेरे में एक छोटा सा दीपक अगर हम जला के रख दे तो उजाला हो जाता है और सब लोगों को दिखाई देने लगता है, और जब सब लोग दिखाई देने लगता है तो लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। यही हमारा लक्ष्य भी है जीवन की ज्योति का, कि जो जीवन है इसकी एक छोटी सी ज्योति को जला दिया जाए रेडियो के माध्यम से। और जो चीज हम लोग रेडियो के माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी बातें को शेयर करते हैं, उस चीज को लोग अगर सुने और समझे तो जरूर उस तरफ वो अग्रसर होंगे और उनके जीवन में प्रकाश होगा। यही हमारा लक्ष्य भी है, और यही जो सब लोगों का एक जीवन की जीने का सिद्धांत है, यही मूल भी है।
0: तो राजेंद्र जी, अब ये बात हो जाता है कि हमारे आज का संदेशों में कुछ और अभी संदेश हम सब रखने वाले हैं। गत दिनों हमारे इंडिया से कुछ और संदेश आए, तो बबली जी आप कुछ सुनाने वाले हैं। बबली जी की ओर हम लोग बढ़ेंगे राजेंद्र जी, तो पहले
1: हाँ जी जी जी

0: दोस्तों, जो संदेश जो बबली जी रखने वाले हैं, संतान का दोष ना दो ना बबली जी,
1: संतान को दोष ना दें।
0: तो इसमें संदेश क्या है दोस्तों, अभी बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ मानकर माता पिता को मामा और डैड कहना सिखाया।
0: तो बबली जी, इस पे ये हो जाता है कि देखो, यहाँ हॉलैंड में हम लोग सभी नीदरलैंड स्कूल में जाते हैं ना।
1: हाँ जी।
0: और ज़रूर कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पर कुछ और यानी कि अमीरों के लिए होता होगा ना शांता जी।
2: जी जी हाँ।
1: भारत में तो शांता जी आजकल हर कोई कहता है हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी बोले।
2: हाँ, इस पर बहुत कटाक्ष हो रहा है, ऐसे चाहता है कि, पर सीखना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ने के लिए सीखना चाहिए, पर अपना मातृभाषा जो है उसको नहीं भूलना चाहिए।
1: हाँ जी, सही बात।
2: हाँ, जैसे हम सब यहाँ रोटी कमाने के लिए हमको डच बोलना है, पर हम जब घर पे रहे तो हमको अपना भाषा भी बोलना है।
1: सही बात।
0: शांता जी, ये बात हो जाता है कि लोग इस पे ध्यान देते हैं कि देखिए, हमारा तो उम्र जा रहा है धीरे धीरे ना, पर लोग कभी ऐसे कहते हैं कि यहाँ हम इन द माजकापाई खुद तक फंक्शनर दिन ये खुद ये नई दलांस तक कहना। तो इस पे आप सहमत है या नहीं, क्योंकि देखो हमें आज तक इस बात के लिए कभी किसी को प्रमाण नहीं देना पड़ा कि हम हिंदू हैं और हमारा मातृभाषा हिंदू है, और हमारे बेटा को और बेटी को कम से कम कुछ हिंदी और कोर्स, क्योंकि भारत देश से और यहाँ पर एम्बेसी और यहाँ ख़ास करके कितने मंदिरों में लोग और जा कर के हिंदी लेस आदि दिया जाता है, ताकि हम सब हिंदी को पढ़ सके, अपना मातृभाषा को जाने। और ख़ास करके मेरे को लगता है, देखो देखत देखत समय विपरीत होता है, और समय जब विपरीत होता है तो बबली जी, अभी मैं देख रहा हूँ आप अपना वृतांत सुनाने वाले हैं, पर वृतांत सुनाने से पहले कुछ रूल्स होता है हमारे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का, जिसे हमें पालन करना है।
1: हाँ जी, जरूर।
0: तो न्यूज़ और कमर्शियल के बाद और हम सब अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।
1: हाँ जी।

0: एक क्रांतिकारी बंदा बेरागी का ये संदेश जो उन्होंने रखे और जा कर के हम सब इस समय जो बबली जी अपने ओर से जो कुछ संदेश रख रहे हैं, जो हमारे खोजी सेना ने हम सब के लिए तैयार किए हैं। बबली जी अपना संदेश को आगे रखिए।
1: हाँ जी जरूर। जब अंग्रेजी कल्चर या डच कल्चर से परिपूर्ण लड़का या लड़की बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नज़र नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो लें।
0: तो बबली जी, कहने के तात्पर्य यह हो जाता है कि हमें अपने बच्चों को ये जो शब्द आप अभी प्रयोग किए कि संस्कार देना।
1: हाँ जी
0: शांता जी, इस पे आपका क्या ख्याल है?
2: हाँ, मेरे ख्याल तो यही है कि घर पर संस्कार देना चाहिए।
0: और कैसे संस्कार किया दिया जा सकता है? हमने कह दिया किया पर दिया जा सकता
2: जैसे है। जैसे हम भी हमार माँ जहाँ मैं अपने पर बताती हूँ ना, जब मैं भी छोटी थी तो माता पिता कहती थी नहीं दलांस बतिया, घर है बच्चे नहीं दलांस बतिया, नहीं दलांस बतिया। हम लोग के जोर दे दिया, मामा पापा ने जोर दिया देते थे कि घर पर नेदनास भी बताया ताकि स्कूल पर जाकर उसको भी तुम वैसे ही करना। पर वह तो हमारे भाई बहन में तो हम तो बस हम अपना हिंदुस्तानी बतियाते थे और स्कूल पर जाकर तो हम नेदनास बतियाते थे। तो ऐसे हम दोनों सीख गए, स्कूल पर जाकर डच सीख गए और घर पर अपना भाषा भी सीख गए और हिंदी तो अलग से सीखी।
1: शांता जी, डच तो सीखेंगे, इंग्लिश तो सीखेंगे, क्योंकि तो स्कूल जाना है।
2: हाँ,
1: वहाँ तो सीख
2: रोटी कमाना है।
1: सही बात। और घर में तो अरे अपनी भाषा बोलनी चाहिए ना, ये हो जाता है। लेकिन
2: देखो
1: हम पहले आप बोले।
2: हाँ देखो, हम अपना भाषा को, अपना हिंदी भाषा को तुच्छ भाषा समझते हैं ना हम।
1: हाँ,
2: आजकल में हम ऐसे समझते हैं, पर देखो हम लोग उससे तुच्छ समझते हैं, पर ये गोरा जो है देखो वो सब संस्कृत में अब बात करते हैं।
1: सही।

0: तो इस पर मैं आगे क्या कहूँ आप खुद समझ रहे हैं।
1: और ये भी है शांता जी, भारत में भी आजकल ऐसी है जिसको इंग्लिश आती है कहते बहुत पढ़ा लिखा है, चाहे उसमें संस्कार कुछ ना हो, और जिसको हिंदी आती है उसको गवार समझते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती।
2: बबली जी, सरकारी स्कूल माने तो जैसे हम लोग के सूरीनाम में ओपनबार स्कूल है ना शांता जी?
1: हाँ जी, लेकिन भारत में दो स्कूल चलते हैं, एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, और जो कॉन्वेंट स्कूल कहलाते हैं उनमें इंग्लिश में बात होती है, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना लिखना।
2: पर यहाँ पर ही जैसे कि फेवियो आप जाओ ना,
1: हाँ जी,
2: तो फेवियो पे आपको तेई तालख अंदरवाइज भी दिया जाता है, यानी कि वहाँ सभी और जितना फाक है सब इंग्लिश में, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जो काफ़ी तेज होते हैं ना, चलाक होते हैं, हाँ चतुर होते हैं, तो वो और त्वई तालख कर सकते हैं यहाँ।
1: हाँ जी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सरकारी स्कूल है तो हिंदी में सब सब्जेक्ट होंगे, अंग्रेजी अंग्रेजी में होगी,
2: जो इंग्लिश मीडियम होता है वो
1: उसमें सब सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं,
2: सब सब्जेक्ट।
1: हाँ जी, बोलते भी इंग्लिश में है, हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते।
2: तो आपका संदेश क्या है और बबली जी?
1: क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंदिर मंत्र पूजा पाठ आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फराटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले आप हैं।

0: सफलता जीवन के चार सूत्र है। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम बने, मीठा बोले तो पहचान बने, और सम्मान करे तो नाम बने। बबली जी, जैसे कि आप संदेश सुना रहे हैं कि हमें ये बात नहीं है कि ज्योति का प्रकाश आपको ये संदेश दे रहा है कि आपको ऐसे रहना है, ना ना, आप अपने बच्चों के परवरिश खुद जानते हैं कैसे करने को। हम तो बस यही रेडियो द्वारा कुछ न कुछ संदेश ज्योति का प्रकाश के ओर से रख देते हैं। परिभाषा के बारे में आप क्या करने वाले हैं? आप ये हिंदी, हिंदुस्तानी संस्कृत, इसे माने या ना माने, पर बबली जी जो अपना संदेश लेकर आए हैं हमें सुनाएंगे जरूर।
1: हाँ जी, जरूर। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखाने वाले आप। परीक्षा देते जाते समय इष्ट देव बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप।
0: तो बबली जी, क्या अपने मम्मी को आप दुई नहीं कहते?
1: नहीं, जब हम भारत में थे हम तो अपनी मम्मी को कहते सत श्री अकाल।
0: शांता जी, इस पे आप कुछ कहने वाले हैं?
1: आप क्या कहते थे शांता जी? हम तो कहीं जाते थे कहते सत श्री अकाल, पंजाबी बीबी भी कहते हैं तो हम कहते बीबी सत श्री अकाल, और आजी को कहते हम बेबे बेबे सत श्री अकाल, हम जा रहे हैं घर से वहाँ।
2: उन समय पे जहाँ मैं छोटी थी तो हम तो उतना भाषा के तकरार नहीं पता था मेरी को। हाँ। पर जब से मैं समझ जानी तो सत्संग में सीखे और कथा में ऐसे सुने कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, पहले ही करना चाहिए तो उससे आशीर्वाद मिले है। हाय करिए, बाय करिए, दुई करिए तो उससे आशीर्वाद नहीं मिलता।
0: तो बच्चे मन के सच्चे, जैसे कि भी आपने कहा, क्यों ना वो गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी।
2: हाँ।

0: बच्चे मन के सच्चे, जो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है ना, तो फिर तन में झगड़ा और बस फटाफट फिर प्रेम हो जाता है, ऐसा है कि नहीं?
1: ऐसा बिल्कुल है। अगर हम देखें तो हम अपना बचपन देखें तो हम ऐसे भाई बहन मिलकर ऐसे पल में खेलते रहे, पल में झगड़ते रहे, फिर पल में खेलते रहे, और बड़े हो जाता थोड़ा से एक शब्द के लिए बरसों तक
0: बात नहीं होते, ऐसा होता है ना?
2: हाँ, ये हकीकत है, ये सच्चाई है।
1: हाँ, मेरा छोटा भाई एक उदाहरण इस पे दी था ना, वो कुत्ते के बारे में कहा।
2: हाँ।
1: कि कुत्ते को आप जितना मार दो या ठुकरा दो, वो बेचारा फिर घूम कर आकर तुम्हारे पास बैठते, उसमें ये नहीं देखते कि ये मेरी कुमारे में इसको काटूंगी। नहीं,
0: ऐसा बिल्कुल, जैसे कि शांता जी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हम सब
1: हमारे पास इतना ज्ञान होते हुए हम एक छोटे से चीज लेकर और इतना दूरियां बना लेते हैं। दो दिन की जिंदगी है, अगर जन नहीं होते तो बैठ के रोते हैं,
0: जब नहीं रहते हैं तो बैठ के रोते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा शांता जी कि दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतरीन इंसान बना देता है, तो यही बात हमें ध्यान देना है ना?
1: अरे हाँ, सोचो ना, ये दो शब्द है पर उसमें कितनी गहराई है, सोचो ना, कम शब्द में और ज़्यादा दिमाग भिड़ाने में। तो आज तो यहाँ तक हमारे ऋषियों मुनि ने तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे।
0: सही बात,
1: जिससे आज बैठकर अभी हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखो, हम यहाँ स्टूडियो में बैठते हैं और कितने लोग हमारी आवाज़ सुनते हैं।
0: जरूर, कितने, क्योंकि ये कार्यक्रम जो यहाँ से बनाया जाता है, दनहाग शहर न्यूटन स्ट्रात 5 और 20 तक से ना, दुनिया के कितने देशों में ये कार्यक्रम को भी सुना जाता है, और सभी जो सुनते ही इस कार्यक्रम को हार्दिक से अभिनंदन किया जाता है। जरूर हम इस बात को रखते हैं कि हमारे जो आज का संदेश जो बबली जी इस समय रखने वाले हैं, तो बबली जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
2: हाँ जी, जरूर। बेटा या बेटी के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले आप, बेटा या बेटी के विवाह के पश्चात कुल देवता देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाले आप, ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर को हमने जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी हमें शर्म आती है। गलती किसकी? मात्र आपकी, माँ बाप की।
0: तो बबली जी, क्या चरण स्पर्श नहीं किया जाता आप?
2: भारत में भी मैंने देखा है लोग कमती करते हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप को कहाँ चरण स्पर्श करते हैं, मुँह से बोल दे वही बड़ी बात है।
0: ये बात जैसे कि आप कह रहे हैं बबली जी, तो ये मुझे भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज से जब मैं कुछ 22 साल पहले जो भारत में थे ना, जहाँ भी जाओ लोग प्रणाम करते थे चरण स्पर्श करके, और अभी हम गत दिनों वहाँ से आए, हर बार जाते रहते, पर वहाँ भी कम हो गया, लोग चरण स्पर्श के जैसे भूलने लगा।
2: सही बात।
0: इस पे शांता जी, इस पे कुछ आप सुनाने वाले हैं?
1: मैं सुना दूँ?
2: सुनाइए जरूर।
1: यही कलयुग कहते हैं।
0: तो ये 20 साल में कलयुग कैसे बदल गया?
1: नहीं, जो अपन धर्म से हट जाते हैं ना, जो धर्म से अलग होने लगता है, उसी को थोड़ा से कलयुग कहते हैं।
0: उसी को लोग कलयुग कहते हैं।
1: ये मेरा मत है ना, मैं अपने विचार से कह रही हूँ।
0: जरूर, क्योंकि संदेश जो आप रख रहे हैं, ये जरूर हमारे सुनने वालों को भी इस बात से स्पर्श हो, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल
1: कलयुग किसको कहते हैं? कलयुग कहते हैं जो अपना धर्म से चुकते हैं, अपन धर्म से जो हटते हैं,
2: जिसमें अपना धर्म भूल जाए, बड़ों का आदर सत्कार भूल जाए, तो कलयुग कोई स्पेशल चीज नहीं है।
1: नहीं,
2: यही कलयुग
1: व्यवहार जो हम कर रहे हैं,
2: व्यवहार जो हम सीखते हैं, करते हैं बड़ों से, वो बदल जाता है, उसी को कलयुग कहते हैं।
1: कलयुग उसी को कहते हैं।
2: सही
1: बात। इतने दातर अंदर तेज पैर कोम्बतेस पत वे ऑन्स हम दलिंग दारिन फरम दरे दैट इज दान द कलयुग कैन टेक और।
0: तो दोस्तों ये बात जो अभी रखा गया,
1: आपने सवाल की हमने जवाब,
0: और शांता जी ने जवाब रख दिया भी कि कलयुग यानी कि जो आजकल जो हो रहा है ना, अभी हम सब जैसे प्रणाम पहले करते थे, चरण स्पर्श करते थे, ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने, फिर दोबारा कहता हूँ कि यहाँ से कह रहे हूँ कि आप चरण स्पर्श करो, पर नहीं, समय बदल रहा है और कुछ कुछ चीज़ें जो हम शायद भूल रहे हैं, तो हमें इन बातों पे थोड़ा से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बबली जी भी कुछ इशारा कर रहे हैं। तो बबली जी आप बताइए
2: ना, समय नहीं बदलता, समय वही रहता है, इंसान बदलता है, समय तो वही है, हम कहते हैं समय बदल गया, समय वही है, इंसान बदल जाता है,
0: समय वही है, इंसान बदल जाता है।

जैसे कि अभी आपने सुना कि समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता।

0: ये गीत जो रखा गया और कौन सा फिल्म का था शांता जी?
1: हम देखे तो है सन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चे।

0: बबली जी, जो संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: हाँ जी जरूर, अंग्रेजी और डच अच्छी भाषा है, इसे सीखना है, इसकी संस्कृति को नहीं, जीवन में उतारना नहीं है। मानो तो ठीक, नहीं तो भगवान ने ज़िंदगी दी है, चल रही है, चलती रहेगी। आने वाली जनरेशन बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता विलुप्त होती जा रही है। बच्चे
2: वो लाइन जो आपने पढ़ा,
1: हाँ जी
2: बबली जी,
1: सही बात शांता जी,
2: हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता जो है वो विलुप्त होती जा रही है।
1: बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और इसमें मैं भी हूँ। सोच कर, विचार कर, अपने और अपने बच्चे, परिवार, समाज, सांस्कृतिक और देश को बचाने का प्रयास करें। हिंदी हमारी राष्ट्र और मातृभाषा है, इसको बढ़ावा दें, बच्चों को जागरूक करें ताकि वो हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़कर गौरवशाली महसूस करें।

0: हाँ जी, तो अभी आपने बबली से सुने और बबली कितने अच्छे शब्दों से भी कहा कि हमारा सभ्यता जो है वो खत धीरे धीरे लुप्त होता है, पर मेरे ख्याल से वो नहीं लुप्त होगा। कहाँ के ऐसे कई भी व्यक्ति हैं जो अपना सभ्यता को पकड़ रहे हैं और आगे भी चलते हैं। ऐसे भी कई बच्चे हैं जो सभ्यता के साथ भी बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, लेकर चलते हैं। तो ऐसे हमारा सभ्यता नहीं लुप्त होगा, बिल्कुल नहीं, एकदम से पर के थोड़ा से कम हो जाएगा आगे आगामी में चलकर।
1: कि सब एक जैसे नहीं होते तो
0: ना। और ये सभ्यता मेरे ख्याल से लुप्त होता है, उसका कारण है हमारा भाषा, भोजन और आभूषण जो है। भाषा यानी कि जो हमारा अपना भाषा है उसको हम थोड़ा से भूल रहे हैं, और भोजन जो हम जो हमारा भोजन जो सही जिसमें हम कुछ और पावर उसमें निकाल सकते हैं, जिससे हम और बढ़िया से सोच सकते हैं, वो भी हमारा भोजन में कितना परिवर्तन भी आ गए है। और आभूषण जो हम पहनते हैं हाँ। उसमें भी कितना फर्क आ गए है।
1: आभूषण कह लो, कपड़ा कह लो,
0: हाँ
1: वो भी है। हाँ जी, उसी हाँ। में आ जाते हैं।
0: तो उसी ये तो ये सब फरामदर होते होते तो हमारा देह भी बहुत से ऐसे कुछ फरामदर हो रहा है, पर ये बदलता है। हम छोड़ते हैं, दूसर कोई लेते हैं, कोई उसका जिंदा रखते हैं।
1: हाँ।
0: हम देखे में तो हमारे देखे में तो जिंदा है, रहेगा। सुनने वालों, आप हमारे मेन पैनल के पाछे बैठे हैं संजय दी, और संजय जी एक गीत तैयार करके रखे है, तो हम यहाँ से सुनेंगे संजय जी जो गीत तैयार करके है, नानी तेरे मोरनी का।
1: नानी तेरे मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए।
2: तो दोस्तों जरूर संजय जो पनेल के पीछे बैठे हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना।
0: हाँ, बागदौर तो तुम्हारे हाथ में,
2: कुछ भी हो सकता है। और कुछ गलतियां हो जाए तो बच्चा छोटा है, माफ करना। और ये जब ये संदेश, इसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ शांता जी।
0: अबे हाँ बिल्कुल,
2: क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा गया है कि सुबह सुबह अगर किसी अच्छे इंसान से राम राम हो जाए तो दिन अच्छे बीतता है। तो इस पे आपका क्या संदेश है?
0: मुझे वो बात याद आ जाती है कि कहते हैं कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है।
2: दुई मत कहिए ना, बाय बाय मत कहिए
0: ना। बाय बाय तो दुई दुई तो दूर दूर हो जाता है, तब क्या उसमें कुछ परिणाम नहीं आता है। हाँ तो देखो ना, राम राम में तो आप दो बार राम राम कह दे तो 108 बार उसमें माला जाप की तरह हो जाता है। और यहाँ हमारा बबली जी कह रहे थे संस्कार, तो संस्कार का मतलब है ऑफ फूडिंग एंड फॉरम हीफिंग ऑन यू सेल्फ एंड उग ऑन यू कोमंद हेनराज सीदम।
2: क्योंकि कहावत है कि जो आज आप वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष का फल समय लगता है, पर फल जरूर मिलेगा, और कितना सींचेंगे उसी तरह से उसमें मिठास को प्राप्त होंगे। तो हम
0: वो बात सही है, पर हम कभी कहते हैं मैंने स्नोइट आउट ओम तलेर, हम आज भी अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। और फूडिंग हम आप अपने आप को भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी है तो है कि बच्चों को भी ऑफ फूडिंग। पर मैं भी एक बच्चा हूँ जो जो सोचते हैं कि ना हम उम्र की हो गए मैं सीख नहीं पाऊँ, नहीं वो सब आप सीख सकते हैं।
1: सेवा सीखने की कोई उम्र नहीं,
0: कोई उम्र नहीं, नहीं
1: कहते जब जागो तभी सवेरा।
0: वही ये मेरा मत है ना, ऐसे मैं सोचती हूँ, ऐसे मैं बोलती हूँ।
2: और बबली जी कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो उठते हैं तो कुछ उम्मीदें लेकर और सोचते हैं कि आज हम ऐसा ऐसा और करेंगे, पर सूर्य उदय के समय पे और जब सूर्य शाम में और जो थल जाते हैं, कहा जाता है कि द अरफारिंग दुर्दही लद्दाख मई खमा, जो हम प्राप्त करते हैं। तो हम ये सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे, नानी तेरी मोरनी को मोर।

0: चलो यहाँ जो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए ना बबली जी।
1: हाँ जी।
0: और मोर किसको कहते हैं? मोरनी और मोर होता है?
1: हाँ जी, मोर है स्त्रीलिंग और मोरनी है पुल्लिंग लिंग। सॉरी मैं उल्टा कह रही हूँ, मोर है पुल्लिंग लिंग
0: बबली जी, ये स्टेशन है और रेडियो से कुछ गलतियां हो ही जाता है, तो हम उसे जरूर उसे डायरेक्ट और उसे फिर दोबारा कह देते हैं कि मोर और मोरनी। और शांता जी, ये गीत तो हम सब छोटे थे तो रेडियो पे चलता था ना?
2: बहुत
0: है। बहुत चलता था ये गीत जो हम सब छोटे थे, जब जा करके ये सुंदर सन, ये फिल्म में ये थोड़ा खड़ूस वाला नानी थे ना?
2: हाँ, तो आप कहते हैं ये सब गाना ना, तो इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे चुन हैं और फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप ये ऐसे ही पुराना जो है यादें ताज़ा हो जाता है, तो आपको सुनने को मिलता है आप ही का फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
0: हमारे वही थोड़ा लक्ष्य भी होता है कि पुराने यादें थोड़ा ताज़ा हो जाए ना। बबली जी, जो आप संदेश सुना रहे हैं इस पे जरूर कुछ और कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग सत्संग आदि जाते, हम लोग मंदिरों में जाते, हम लोग कहीं कहीं और जाते हैं और लोग कहते हैं कि अब समय कहाँ है पढ़ने का, तो इस पे बबली जी इस पे नहीं, शांता जी इस पे कुछ कहने वाले हैं। तो शांता जी अगर कोई,
2: आप क्यों मुड़ गए बबली से शांता क्यों कर दे?
0: क्योंकि मैं देख रहा था इशारा हो रहा है और पनील के पीछे मैं जरूर हूँ पर पीछे मैं देख पाता हूँ, तो आप इस पे कुछ और बताइए क्योंकि अभी तो समय अभी, है ना?
2: जी जी ना, वही तो अभी हमने गीत से पहले अब बात की थी ना कि कोई उम्र नहीं है सीखने के लिए।
1: हाँ जी।
2: हर एक वक्त में आप सीख सकते हो, हर एक उम्र में आप अवस्था में भी आप सीख सकते हो। बल्कि ये होता है कि अगर आप किसी से बोलो कि आप हिंदी क्यों नहीं सीख लेते, तो जल्दी से उम्र वाले लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे माता पिता ने नहीं सीखा, मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाए। मेरे माँ बाप ने तो ऐसे तो कई चीज़ों ने नहीं सीखा, पर हमने तो सीखे हैं।
1: सही बात।
2: हाँ, तो गलती नहीं देना चाहिए किसी और को, बल्कि
0: माता पिता को गलती जो देते कि हाँ मेरा माता पिता ने नहीं समझ सिखाया ना।
2: हाँ, बल्कि जहाँ पे जहाँ से आप चेत लेना बस वहीं से आप आगे बढ़ना सीखना, तो आप ही का उसमें उन्नति होगा।
1: सही बात।
2: यू हैव सेल्फ फॉरवर्ड इन, यू हैव डन सेल्फ द इन सेक्ट इन।
0: पर शांता जी ये बात हो जाता है कि देखिए हॉलैंड एक देश है जहाँ पर लोग और ख़ास करके द आउदरन है, जहाँ पर हम लोग जायला और देखिला कि लोग कितना तादाद में रामायण का पाठ करते हैं ऐसे सत्संग में, ब्यूर्थ हाउस में आदि में, और ख़ास करके जो गांधी सेंटर जो हमारे लिए दरहाग शहर में बनाया गया है, जहाँ से एम्बेसी हम लोग के लिए ना कि सिर्फ भाषा पर हमें और म्यूजिक सिखाने के लिए, हमें योगा सिखाने के लिए, हमें अनेक अनेक प्रकार के और सहयोग देते हैं, तो क्या हमारे सुनने वालों इस पे ध्यान देंगे? ऐसा हमारा जीवन एक साल से दूसरा साल, दूसरा साल से तीसरा साल आगे बढ़ते, पर एक चीज़ और बढ़ता है, वो है हमारे अवस्था, और उस पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उसे हमें स्वस्थ रखना चाहिए। और ख़ास करके जो आज का विषय रखा गया, एक क्रांतिकारी जो भारत देश का और हमें एक इतिहास सुनने को प्राप्त हुआ राजेंद्र जी के ओर से और बबली जी के ओर से, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम अपने बच्चों के प्रवेश नहीं,
1: परवरिश,
0: एक ही शब्द का अंतर है,
1: सही बात,
0: प्रवेश और परवरिश, पर परवरिश में क्या हम उस पे क्या कर सकते हैं। तो संदेश जो हो गया है, और तो ये गीत तो हमें चलाना चाहिए क्योंकि ये गीत तो आज के शांता का पिटारा से निकाला गया, और शांता जी जो ये गीत नहीं चलेगा तो थोड़ा से कम हो जाएगा ये कार्यक्रम में, पहले ये गीत की ओर बढ़ेंगे।
2: उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम ऐसे भी कई व्यक्ति की भी देखे ना, बच्चों को भी ऐसे जो मास्टर की डिग्री होते हुए और उनको भी सुनना कैसे वो अपना हिंदी में बात करते हैं तो भी अच्छा लगता है देखने का सुनने के लिए, ताकि वो भी इतना मौज से कार्यक्रम करते हैं भी हिंदी में और अपना हिंदुस्तानी में, पर वो भी मास्टर की डिग्री लेते हुए
0: फिर भी जरूर अपना जो बड़े बड़े कागज यानी कि टाइटल्स ले करके और
2: अपना परिवरिश और संस्कार है उसमें, तो अच्छा लगता भी देखने के लिए, ताकि हम सब भी इस पर थोड़ा सा गौर करें।
0: जरूर शांता जी, इस पर मैं थोड़ा सा कुछ और कहना चाहूँगा कि देखिए हम लोग के जैसे 16 संस्कार होते हैं ना, तो 16 संस्कार होते उसमें से शायद जो हम 2-3 कर लेते हैं तो काफ़ी है ना। हमारे जो गोरे होते हैं वो जो हिंदुत्व को प्राप्त करते हैं और अपना और भी संस्कार हो जैसे कि गर्भदान संस्कार, ये संस्कारों को सब साथ में ले करके चल रहे हैं, तो हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और जो आशा भोसले ने हम सब के लिए

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ, क्या दादी मान गए?
1: जरूर से मान जाएगा। अगर बच्चे कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे को अगर आप देखेंगे तो मनाएंगे, तो आप जरूर से मान जाएंगे। आप जितने भी रूठे रहो, अगर आप एक बच्चे को देखेंगे तो उसके नादानीपन, उसका उसका भोलापन है ना, सैफर है फानत के दिला चखून फलाख। या
0: तो सैफर है फानत के दिला चलाख, तो ये बात बिल्कुल सच है। और शांता जी, ये भी बात है कि हमें एक गीत और रखना था, पर क्या हम वो गीत की ओर बढ़ सकते हैं या नहीं, ये तो बस आप ही बताओ।
1: सो यहाँ पे पिलोत आप है, तो आप जैसे आप करिए वैसे चलेगा। हम लोग तो यहाँ पाशाशीर से
0: पैसेंजर से। तो ये ज्योति का प्रकाश जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम सब आज जो संदेश रखे, राजेंद्र जी जो अपने ओर से, बबली जी जो अपने ओर से, और शांता जी, तो क्यों ना ये गीत चला देते हैं और फिर हम सब न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे।

पीड़ा एक संकेत है कि तुम जीवित हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो, वो ईश्वर है जो सब अच्छा करेंगे। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

चांद को चांदनी बधाई है, आसमान को सितारे बधाई है, और हमारी तरफ से आपको एक शुभ दिन होवे, एक शुभ रात्रि होवे।

जो कि हमारी बात को इतने दूर से और इतनी कंट्रियों में बड़े प्यार से अपने समय निकाल के सुनते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए हमारे साथ बबली आसरा जी, शांता खेमई जी और हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी, जो हम सब के साथ जुड़ गए थे। मैं हूँ आपका सेवक संजय। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे, पर मैं हर बार की तरह ये जरूर कहूंगा कि एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है
1: अब तो सनम
0: कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।
1: तेरी कसम।
0: आशा ये रखता हूं कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आपके पास पहुंचे होंगे। हमारी खोजी सेना के ओर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सब के लिए सभी और जा करके जानकारी इकट्ठा करते हैं। सभी को नमस्कार और फिर मिलेंगे।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। माइटी मुकेश।

0: गया हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमी है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 अक्टूबर 1928 को लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुए। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह तख्तक में बनी थी और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नत के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निखिल फिरन तख्तक में बना था वो स्टेफन स्पीकलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी नहीं स्टीफन फेस्टिक में उर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। नीगनन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग, दोस्तों एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कनाडा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपर्त आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसने उफन करते थे। अमरीश पुरी वैसे तो कई अवार्ड भी पाया, निजी एक्टर शीर्षक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

निखिल ती निखिल सीफन तक में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद निखिल सेशन तक तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में निखिल ती इन निखिल महाराष्ट्र स्थित गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। निखिल सीफन निखिल तक में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में निधि अख्तर निखिल ने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में। निखिल तीन द्री निखिल तक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में। निधि फिल्म निखिल तक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में। निधि सेशन निखिल तक के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में। निधि निखिल निखिल तक में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में। उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु नहीं 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी उर्मिला देविकार और बेटी राजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनो,
1: हाय हाय सुनो सुनो भाई बहनो,
0: सांभलो रे सांभलो ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

आउने सानिध्य पर आज चुन है आज सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ वेलकम कहता हूँ मिले जुले गीतों के साथ मैं आपका सेवा करने वाला हूँ सुबह लेको कभी शाम लेको

0: हर घड़ी करूं मैं तेरा इंतजार, कभी कभी इंतजार करते करते दिन बीत जाता है और रात भी कट जाता है, फिर भी इंतजार वो इस तरह से रुक जाता है। अखियों से गोली मारे, आप सभी को एक शुभ दिन प्रगट हो।
1: एक्टिव स्किन केयर एक्टिव्स फॉर एन इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन।

जिसका डांस स्टाइल अलग है दोस्तों, रवीना टंडन के साथ काम किया फिल्म दुल्हे राजा में, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी मैंने आपके लिए पेश किया। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बात लेंगे हम आधे आधे। किशोरदा एंड नाइटिंगेल, लता मंगेशकर दोनों के आवाज़ों में।

बात लेंगे हम आधा आधा, क्या वादा है। मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो वो वादा जो तूने पूरे न कर सको, मत करो प्यार जो तुम निभा न सको।

तू मेरा हीरो नंबर वन। जब दिन नहीं कटते या रात नहीं गुजरते तो आपको क्या करना है, फाहर हिंदुस्तानी पर चॉइस के लिए आप रेडियो, और पूरे तरह से आपका दिन कट जाएगा और रात भी गुजर जाएगा। हमको तुमसे हो गया है प्यार, ये बात सही है या नहीं?

0: बोल।
1: हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे क्या करना है, जल्द से जल्द शादी कीजिए, हो न सके कि ये प्यार जो है चिड़िया की तरह उड़ जाए। दोस्तों, किशोरदा, लता मंगेशकर, राफी साहेब और मुकेश, ये चारों जो उन दिनों में बॉलीवुड को हाथ में थमा था, ये चारों के आवाज में ये गीत आप अभी सुना, हमको तुमसे हो गया प्यार क्या करे। उसके बाद मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाता है।

की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, क्या समझा नहीं समझा, जरूर समझ गए होगे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबा पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गए। मसीह मोहम्मद रफी की आवाज में साथ आशा जी।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, जब गीत मैंने सुना तो एक छोटा सा शायर याद हो गया दोस्तों। अंधेरा गया सूरज निकल आया, अंधेरा गया सूरज निकल आया, है बेवफा तूने प्यार मुझसे किया, तूने प्यार मुझसे किया और शायरी उससे कर डाला। क्या बात है।

उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, मिर्ची कहाँ लगा, आँखी में या होठ पे या पता नहीं, लेकिन मिर्ची लगा है दोस्तों। अब की बार हम तुम युग युग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। सुनील दत्त नूतन ने काम किया फिल्म मिलन का सॉन्ग नाइटिंगेल लता एंड माइटी मुकेश के आवाज में आप सुनेंगे। सुनील दत्त दोस्तों ये कलाकार फिल्म एक्टर बने से पहले ये रेडियो पर अनाउंसर का काम करता था।

हो निशानी पर आप चुन है और यहाँ से आरम्भ होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार करे, वो भी प्यार करे किसी

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वादा दरबर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रुकन हाथ सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

तारों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नति यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका केके के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर केके पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस निगरी अख्तन सेस्तक इंडिया का प्लेबैक सांगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है टमारा। मलेशिया से ओडर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ, न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना केके ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीगर तक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना, एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना, उसके चेहरे पर मत आना, उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे क्योंकि म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया यानी फेरिस्तैद दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्तैद में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथफतेंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स कीकी ने बनाया। लेस लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह नीह में कीकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरफ तरफ पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें कीकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे कीकी की आवाज़ में बीते लम्हे।

निघंटिंग सेशन निघंटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल्स प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2007 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख की बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी के एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 63 साल के उम्र में मई 2002 के बाद है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जानते ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आइए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यारह फैफन शैस्तक, सैसन शैस्तक, सीफन शैस्तक, आख्तन शैस्तक, तो निगरी सीफन तक डबले रेस खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरज जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप ट्यून है

और नाचो बेटी नाचो, ये सॉन्ग है मारी जोसी जमीर और ये गीत है नाचो बेटी नाचो और ये है भोजपुरी सॉन्ग। और इसके बाद हम एक और भोजपुरी सॉन्ग के ओर जा रहे हैं, मॉरिशस का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों। तो हमने सोचा कुछ सुनाए, अभी वो जा रहे भैया माया कर ले मेरी जान, सेगा भोजपुरी सॉन्ग है और ये भी है का बोले है भैया मॉरिशस का, हो बूढ़ा मत करो बूढ़ा है शैतान, यहां पर लिखा भैया तो हम बोली बता दी, चलो सिरा जाए।

0: कर ले मेरी जान, कुछ भोजपुरी सॉन्ग आज हम लोग आपको मॉरीशस के सुनाते हैं। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, हो बूढ़ा मत करो, बूढ़ा है और वो है शैतान। यहाँ पर गीत के बाद भैया हम ना बोलेला, उसके बाद हम जाते हैं सोना नयोन के कौन फुलवा कौन फुलवा, ये भी एक गीत है भोजपुरी का, आओ मिलकर सुना जाए।
1: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो, अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला होगा।

और कौनो फुलवा के ये गीत है दोस्तों, कुछ आज कुछ और आपको हम सुनाते हैं। सोना नयो गमत और कौन फुलवा का ये जोंग है जो मॉरिशस के लोग इस गीत को गाया है और बहुत खूबसूरत से गाया है। तो आज कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आज हम आप लोग को एक घंटा सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ और सॉन्ग आप लोग को हम सुनाएं। तो हम चलते हैं लंगारों के ओर। लंगारो बॉयज से एक भोजपुरी का और वो है भी मॉरिशस का। आओ सुना जाए ये क्या गाया है।

0: और हे लंगड़ों के बाद चीत को छोता है। हमारे दोस्तों आज कुछ भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशियस को आपको हम सुनाते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और तो आज हम आप लोग को भोजपुरी जोन से मलामाल करेंगे कि कमरवा के कुछ गीत है दोस्तों, और ये कमरवा में क्या क्या होता भैया आप खुद ही सुनिए।
1: काम करवा
0: ओ काम करवा

जी काम करवा, ये भोजपुरी सॉन्ग था मॉरिशियस का। दोस्तों अब हम चलते हैं एक भोजपुरी सॉन्ग, वो है हमारा भारत का, इंडिया का भोजपुरी सॉन्ग, अब मिलकर उस सुना जाए।

0: प्यार करे खातिर जांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए।
1: अपने आप के बहुत बड़ा आशिक समझ ले, चल तो साबित कर।
2: और ऐसा बड़ा नाचे ना माचिस, ये भी भोजपुरी है, ये है इंडिया का भोजपुरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री भोजपुरी ही एक घंटा को सुनाएंगे, और उसके बीच में हम जा रहे फिर एक भोजपुरी जो मॉरिशियस का है दोस्तों। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं।

और हेलो कमरिया फुला के, और क्या क्या ये गीत को ये आदमी कितने खूबसूरत के गाकर सुनाए हैं। आओ ये गीत को और सुना जाए।

0: कुदरत के है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज न भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आदाब बरसो। और की ओर देखता हूं तो 4:01 बीत गया, 8:05। पावन हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है, शुक्रवार है, जून के 12 तारीख हो गया है दोस्तों। धीरे धीरे ये साल 2026 जो है खत्म हो रहा है, आधा पर जाकर रुकल है, लगभग आधा पर। आरंभ होता है प्रोग्राम गीतों का संगम। अभी जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुन रहे थे, अभी 6 बजे एक बार उसका प्रोग्राम फिर आप सुनते रहना। और सामने बैठा हुआ है मिस्टर जोसेफ सेटू, शुक्रवार के तरह ये मैं हमारे साथ देता है दोस्तों। आज का आइटम वो लिख के रखा है, यूसेफ वेलकम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का रहेगा,
1: आज का आइटम है हम, शुरू होता है
0: वो आधा घंटा तक जारी रहेगा,
1: प्यार कर सकते हैं।
0: या आपने सुना दोस्तों, आइटम जो चॉइस करके रखा है यूसेफ आज वो है हम। तो सरहे 4 और 5 के अंदर ये आइटम चलेगा, 5 और 6 के बीच मिले जुले गीतों के साथ पर दिल बहलाऊंगा और मैं स्पोर्ट बरखता रहेगा, छोटे छोटे खबरें भी, और ऐसा खबर जो है न्यूज बरखता। तो 6 बजे के बाद ऐज खबर आप मिस्टर जॉनी नंबर 1 के मुखान से सुनेंगे। मौसम के समाचार फील बरखता वो भी आप सुन सकते हैं प्रोग्राम में। काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 से 5 3 2 8 4 0 हमारा तार का नंबर, आखिर नंबर लिख कर रख दीजिए, मैं दोहराता हूँ 0 से 5 3 2 8 4 0। शुक्रवार है दोस्तों तो हॉलैंड देश का सबसे बड़ा बाजार जो है हाक्स मार्क खुला हुआ है। अगर आप बाजार पे चल रहे होगे या बाजार जाना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपन ऐख दम जो है सारा संभाल के रखना, इसलिए कि बाजार पे बहुत से साकर रोलर्स लुतरे लोग घूमता रहता है। यकीन कीजिए दोस्तों, रोजाना जब बाजार लगता है तो ये लोग भी जैसे कोई नौकरी पे काम पे जाता है तरह से ये लोग बाजार पर आकर अपन काम करता है। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल, बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ 2026।

जैस हिंदी लव सॉन्ग्स कलेक्शन में से मैंने निकाल के सॉन्ग अभी आप सभी के लिए पेश किया दोस्तों। और आज का मौसम के समाचार, मौसम किस तरह से आज है, फमिना के साथ फिलहाल खरेज एंड फर्नीचर टू वेस्टर्न खाथेट ऑफ फील प्लासन ऑफ न्यू रीखनन बैन मात्रक तट फ्रेक क्राक तक सहित वेस्टर वर्थ हेट सेस्टिंग तट लोकाल आखटिंग या नीखनटिंग खराज है। और जब वीकेंड है तो कल शनिवार का मौसम किस तरह से रहेगा दोस्तों, मैं आपसे बताऊंगा। कल जब शनिवार है तो मैक्सिमम टेम्परेचर सीफिंग 17 खराधा रहेगा, उसके बाद सोमदाग रविवार को 18 खराधा 18, वीकेंड बाद सोमवार को 18, मंगलवार को 20 तक और बुधवार को 24 खराधा, फिर 20 खराधा हो जाएगा।

मिस्टर सानू के आवाज़ में भी आप ये सॉन्ग को सुना दोस्तों। ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। और अब की बार राधा सोती, आलिया भट्ट और शरारत मल्होत्रा फिल्म में काम किया है। उड़ित एंड श्रिया दोनों के आवाज़ों में

मिट्टी के टुकड़े साढ़े चार का वक्त है। आइटम का शुरुआत मैं कर रहा हूँ श्रीमान योसेफ सेटू जो मेरे सामने बैठा हुआ है और इस वक्त खड़ा हुआ है। वैसे तो हमेशा बैठा मानस लेसी तो जैसे इस वक्त खड़ा हुआ है लेंस रेस काट रहा और अपन प्यारी प्यारी मासुका सिला के लिए मांग किया है फिल्म कॉलेज गर्ल का ये सॉन्ग हम और तुम और ये समा लवली लवली लवली क्या बात है योसेफ़।

0: नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए सब सुना सुना सा है।
1: हम और तुम और ये शमा पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। दोस्तों आपको मानना चाहिए कि राफी साहब जितना गीत गायल है सबसे ज़्यादा यही शमी कपूर के वास्ते या फिल्मों में पेश किया गया है या प्लेबैक किया गया है। और ये सॉन्ग सुरीनाम नोटपोलरडम के रहने वाली मेरी छोटी बहन लीला द्वारका के वास्ते पेश था। एक बार फिर हम और तुम, लेकिन अब की बार शमा नहीं है। नहीं नहीं, अब की बार क्षमा नहीं, अब की बार हैंगलो के रहने वाला श्रीमान चांदर रघुनंदन की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ या एक दूजे के लिए ये सॉन्ग पेश है, किशोरदा एंड लता। दोनों के मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुनेंगे।
2: तुम और

और तुम तुमर हम हैंगलो के रहने वाले श्रीमान चांदर रघुनंदन जीवन साथी नैली एक दूजे के लिए सॉन्ग पेशता स्वागरिक का हाल है मान वीकेंड है का होई अब की बार हम आज कहीं नील खो बैठे यापी का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ सामने बैठा हुआ है मिस्टर यूसेफ सेटू हम आज कहीं नील खो बैठे फ्रॉम फिल्म अंदाज पुराना फिल्म है नीकन फेर तक का नौसाद का म्यूजिक है एंड माइटी मुकेश के आवाज़ में श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए स्पेशल

0: आज कहीं दिल खो बैठे या समझो किसी के हो बैठे, क्या सॉन्ग है दोस्तों। हम का आइटम चल रहा है और हम का आइटम में अब की बार मैं देखता हूँ तो हम तुमसे मोहब्बत करके सनम,
1: हम तुमसे जुदा होके,
0: और उसके बाद दो ब्रोकन हार्ट सॉन्ग चलेगा। उसके बाद हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, तब ये आइटम हम सब मिलकर समाप्त करेंगे। गोल्डी कहते हैं पुराने गीतों का बहाव।

5 मिनट रह गया है 5 बजने में, 5 मिनट फॉर 5, और अब की बार हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। आखिरी सॉन्ग रहेगा ये आइटम का, रिक्लामा चलेगा न्यूज़ ब्रेक तक।

0: दोस्तों घड़ी कोड देखता हूँ तो 5 मिनट कर 5:05 बीत गया है। अब 5:05 है, पहले रहा 5:55 जो 5 मिनट बाकी था, अब 5:05 है। कोई बात नहीं, आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। जैसे आप सभी को मालूम है तो वी का वर्ल्ड चैंपियंस कप फुटबॉल का शुरुआत हो गया है और वैसे तो सुरनामदेस अपने के नहीं प्लास कर पाया, लेकिन फिर भी हम सब हॉलैंड में रहते हैं और नीदरलैंड एफ डील ऑन द वी का यू सब बात सही है तो कि नीदरलैंड और नीदरलैंड कब खेली फुटबॉल सौंदा आंस्तान रात के कई बजे तीन यूनिट हम सुनी या कैसे खेली ये पान के साथ ओके और जापान के दो तीन स्पीलर तो यहाँ फेयनोर्थ में खेले हैं और आयाक्स में भी खेले हैं या मर हाँ जापान के छोड़ के दो खेल और है और तीन खेल है सोनदाक के
1: ना सोनदाक के है die dag dan in de ochtend, 12 yeah. uur Brazilië-Marokko.
0: Ja. Yeah.
1: Dan heb je om 3 uur in de ochtend Haiti tegen Schotland.
0: Ja. Yeah.
1: 6 uur in de ochtend Australië-Turkije.
0: Ja.
1: Yeah. En in groep E is Duitsland tegen Curaçao.
0: Ja. Yeah.
1: Om 19 uur. En yeah. 22 uur is Nederland-Japan.
0: Je mag zo niet Neymar net selecteren bij de eerste wedstrijd. Net selecteren, heb je ook een blessureke probleem.
1: Ja.
0: Jij is een top voetballer van Brazilië. Dat is een keer Pelé, Ganinza, Romario. En Neymar. Maar Neymar net selecteren. Maar man is het zo gekregen dat je de tweede wedstrijd mee zult spelen.
1: Ja,
0: ja. En काले वीका का शुरुआत भेल है और अमेरिका कनाडा और मेक्सिको तीनों देश में लगातार ये वीका का खेल होगा और शुरुआत हो गया है। तो पहला वेस्टलाइज जो खेला गया वो था मेक्सिको खेली है साउथ अफ्रीका से। यूसफ अभी खेलवा देख ली है मार मेक्सिको तो न्यूज से खेलवा जीती है मार तू का सोचे एगो वीका फुटबॉल एगो वीका लंथ
1: Maar ik vond Mexico ook zo zwak spelen.
0: Thuis, hè?
1: Thuis nog en met net 2-0. Ze hadden eigenlijk met 6-0 moeten winnen. Zoveel kansen hebben gehad. 6-7-0. En daar heb je nog 1-2 man minder. Want twee keer rood heeft Mexico dingen gehad. Zuid-Afrika.
0: En gezien de systeem, zo'n systeem Mexico kreeg bijna 80% balbezit is heb gehad.
1: Daarom zei ik, ze hadden met 5-6-0 moeten winnen.
0: Ja.
1: Gelukkig
0: dat
1: het maar 2 is geworden,
0: 2-0. 10 rode kaart in 1 openingswedstrijd is toch niet een sportief
1: nee,
0: man.
1: Nee.
0: Or 9 spelers raha in Zuid-Afrika. Or 11 spelers raha kun deer teluk Mexico. Vier bij kelwa or zwak weer op dit punt.
1: Bijna heeft Zuid-Afrika nog een doelpunt kunnen maken.
0: Klopt. Maar dat was de enige kans die ze pijn. Maar Kelo Abhar zei dat Zuid-Afrika verdwaald was. Ik weet niet meer.
1: Nee, het was een teleurstelling voor mij van Zuid-Afrika. Ik had iets meer verwacht.
0: Ja, ik ook. Hamzo Jain zei gelijk gelet of zo. Maar ik kreeg ook heel erg, toch? Kale.
1: Ja, dat was laat, heel laat geworden in de ochtend. Dat was Zuid-Korea tegen Tsjechië.
0: Tsjechië? Toen Europa een barca ploeg, man.
1: Deze barca, deze, ja. Die heeft 2 keer in de finale gestaan.
0: Ja. Maar dat kan je zeggen, hoe dan?
1: Ja, kijk, kleine landen bestaan niet, want
0: maar één stand kan snel.
1: 2-1,
0: voor Korea.
1: Voor
0: Korea,
1: ja.
0: Zo.
1: Dat was een verrassing.
0: Ja, maar दोस्तों ये फुटबॉल का मुकाबला जब तलुक रहेगा जब यूसुफ स्टूडियो में रहेंगे तो यूसुफ के साथ छोटा छोटा खबरें आपको मैं जरूर देता रहूँगा। तो फिर भी आज भी फुटबॉल का मुकाबला है और तू जाने यूसुफ के खेले आज
1: हाँ Canada tegen vandaag, ja, Canada tegen Bosnië Herzegovina. Dus dat is om 21 uur, ja. 9 uur. En later in de ochtend om 3 uur Amerika tegen Paraguay.
0: Zo.
1: Dat gaat mooi.
0: Dus तो दुईगो देश दुईगो अब कनाडा रह गए हैं और अमेरिका रह गए उस अपन देश में फिर खेली और सबके चाहिए एक अपन दिखावे कि उस अपन दस एक फुटबॉल लांच है उस अपन एक फुटबॉल लांच है तो मार अन काल है किस वासे कल बीच तलेर कुछ तल तो वो ये सो ओपनिंग वेबसाइट है इकत एक खनित
1: फंड फुट
0: या या मार नहीं मार खुद अन दोस्तों ये अन आपको मानना चाहिए सोमवार रविवार के रात में 10 बजे नीदरलैंड मुकाबला करेगा और वो भी जापान से तो खेल जरूर देखते रहना यूसुफ दंकीवेल

दोस्तों आपकी बार जादूगर तेरी नैना नाइटी गिरलता एंड किशोरदा दोनों के मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुनेंगे।

0: कहते हैं कि पागल लोग बाहर घूमते हैं और अच्छा मनाई पगड़ा घर में, लेकिन पागल घर जो हम बोल रहे पागल घर ना, माफ कीजिए लेकिन सिख तो बेरखलान में है ना, वो सेंतरम परनासिया और हम लोग हिंदुस्तान में तो बोले पगड़ा घर तो तब हुआ। पर आज सवेरे एक बात है, एक दूसर आदमी दूसर को छुरी से भोग दिल मज हम बोली है कि पागल लोग बाहर घूमे तो वहाँ तो ऐसा इस सब जगह पे इस सब स्टिक पारते हैं सो ज़्यादा ना हो है
1: नहीं
0: बनमासी ज़्यादा बहरे हो मार। फिर आज के बात है एक दूसर के एक दूसर पागल को फर्स्ट लाफेंस सेंट्रल जोन है वहाँ पर छुरी भोग दिल सिपाही गए है और फदाख तक ले गया है पॉलिसी बीरे और आगे न्यूज़ में ना जब रही थे हम आप लोग के ज़रूर बताऊँगा।

12 के आसपास न्यू फीन पद जो है डेनहाग शहर में, तो कल के बात है, एक आदमी इस फुटपाथ पे चल रहा था, हाथे में पिस्तौल ले रहा, तो सिपाही जब पहुंचा है तो आदमी से जब कहा है कि रुकने के, तो ये आदमी क्या किया है, एक लॉसेस खुद दागिल है, सिपाही अपन पिस्तौल निकाल के आदमी को ऊपर दागिल है, आदमी गिर पड़ा तो इनके हटकड़ी लगा लिया। ये भी होता रहता है दोस्तों, दिन दोपहरे आप रास्ते पे चलते हो, एक आदमी आपके बगल से पास हो है और हाथे में पिस्तौल ले लें, ये भी मामला है इन दिनों का। अतः शेर खफालक अब की बार ओ मंचली इस मौसम में मंचली तू कहाँ चली, मुझे तो साथ ले लो।

0: हो मन चली तू कहाँ चली, यूसुफ कलिया कालेक बात है हम सीफनिंग रह कले ओतो से जितना न फना बखिंदर तैं था और रास्ता पे दो तीन गो तो कोई देखन फिरी दो तीन गो तो खली रास्ता पे रहा और न बहुत कम थी मने चला था वेरवा से तो मार पहले जब सब ने रस्वा न बनाए लहा जब तू लैम्स द अन बुलफात तू रही करके स्टॉप करके दे रखे को ऐसे किन से कहते लें सो तो चाहे ठंडा रहा चाहे गर्म गुंती हरदम हुआ पर दृक रह रहा या मैं सब और मोई बना दे तो ऊपर से रही करे पानी तक ये सो मार अन मने न जा है बहुत कमती मने जा खाली जब एकदम दृक रहे वंत कौन सी हो सके पार्केर के प्रॉब्लम
1: पार्केर से दूर
0: ओ धनसी पार्केर ना पार्केर या हम सुन ली मन मैं स्टॉक फील मन
1: नहीं
0: नहीं एनु सब हन एना देख रहे हो करेल
1: नहीं हेलो मान
0: नहीं At this last evening is for the Rijken. Hij zei toch?
1: Ja, maar die Rijken gaan ook niet eens. Nee, die Rijken gaan ook niet eens. Waarvoor heb je dan gevoerd?
0: Ja.
1: Je hebt miljoenen daar uitgegeven?
0: Ja.
1: Voor wat?
0: Pahle or verder zit een bocht toe op er hij go patatzaak en viswinkel.
1: Viswinkel, ja.
0: Je kooi tsunamis houdt er zeker hoe een palwaar leek jat ha. Ik go machrik hai. En hoe ze banaan liggo Barkak Hotel. Mooi, tjahi. मार वही दुकानियाँ सब हैं और आगे कर रहे हो इसी चली आई
1: ले
0: ना सिमोन दूसरा नाम रहा
1: हाँ अभी हूँ तार या परमारी बोसोस
0: हाँ या मारा और ऐसी चली आई ले मैं हुआ तो भीतर जाइए तो हुआ स्फेर ना मोई है और अन दी उतना लेकर अभी ने पहले जैसे हुआ पढ़ा वक्त वापे तो वो तो लगाए कि बाजा खोलो के न चाहे वो फल्ला से सो मार फिर भी सब चीज़ों बदल ले हटाए दे मार हम एक को चीज न एक को अन खबाओ या एक को दुकान और ये सब चीज ऐसा जगह पर देख ली कि सब फरप्लास करे तो और मोह होएगी अख्तराइट खान दस न हमने निकाह हुई मार न एक फिर नतीजे लेक पहले मोह लगाए कौन आवे जब दूर से आवे तो के लग गया
1: हूँ। वाला मैं सोचा बेल्ट लाना तो फिर फन फैलो
0: ऑफ़ या आरंभ है ऐसे कोई आवे या मैं ना है मानव या मर या मर या मर या मर या मर

हाय हाय लीना, दिल तूने छीना, दिल छीन के क्या किया तूने पता नहीं, फिर भी दिल लेके चला गया। फिर भी दोस्तों दिल लेके चला गया, और दिल जो है उसे दो, दिल उसे दो जो जान दे दे। आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम। 6 बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना, खास करके जो न्यूज़ ब्रेक है आप जरूर सुनिए।

मिनट 24 11 मिनट रह गया है, 6 बजने दोस्तों, और एक आखिरी सॉन्ग चलेगा, उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम आप सुनते रहना, खास करके जो न्यूज ब्रेक है आप जरूर सुनिए। तेरा, जी हाँ, तेरा मेरा, मेरा तेरा, दिल गया दिल से, स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर, स्वर्गीय किशोरदा, दोनों के मीठे आवाज़ में, फ्रॉम फिल्म नागिन निहरी सेशन से इवन तक में जो रिलीज हुआ एक बहुत से गंभीर फिल्म था, जिसमें रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, विनोद मेहरा, कबीर बेदी, अनिल धवन, संजय खान, रेखा, जोगिता बली, नीलम मेहरा, प्रेमनाथ, जितेंद्रा, मुमताज और बहुत से बड़े बड़े एक्टर ने काम किया।

0: खुशी मत करना दोस्तों, करना है प्यार, करना है तो जान के
1: मौसम
0: होना चाहिए। दिल दे दो और दिल ले लो, लेकिन जान दे के जान ले लो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की ओर देखता हूँ तो सिर्फ 5 मिनट रह गया है 6 बजने में। मिस्टर जॉनी नंबर 1 तैयारियां कर रहा है, अभी आप उनका प्रोग्राम सुनेंगे। 4 बजे से आपका सेवा किया आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हर एक जो प्रोग्राम को सुना या प्रोग्राम में तार किया उसको मैं बहुत धन्यवाद या शुक्रिया कहता हूँ। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। पेश हो आने वाला शुक्रवार शाम में 4 बजे एक बार फिर मैं प्रोग्राम गीतों का संगम के साथ सीरियो में मैं उपस्थित रहूँगा। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा, तो फिर मिलेगा आप सभी को एक सुहानी रात।

0: op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: और नया नया गीत के मजा भी कुछ और है. तुम ही हो आशिक तू, तुम ही हो आशिक तू, आओ सुना जाए.

और दोस्तों ऑनली लवर्स के लिए हम कुछ नया गीत आज हम चलाते हैं। हम चलते हैं एक और गीत की ओर।

और फॉर द लोफर्स के लिए आज कुछ नया गीत हम आप लोग को सुनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ओक एंड रोमांटिक सोफा यार नीख तक भी एक दो को हम सुनाएंगे और बेस्ट लॉयस्टर लाइफ में प्रोग्राम लॉयस्टर कि वो नहीं लेकिन नीखंत का सॉन्ग है जो और फिर से इसको गाया गया है, आओ सुना जाए।

बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपको सनम, और उसके बाद में और इश्क का गीत हम चलाते हैं।

तमाम रेडियो फोन के सुनने वाले को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सिस्टिकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार का पैगाम। दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी हम अपना सूरीनामी और देश विदेश के समाचार लेकर आ चुके हैं। अभी आप लोग हमारे कोलेखा साथी राजन द्वारका से और यूसुफ सेतु से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है। स्टूडियो में आ गया है और वो है हमारा कोलेखा साथी भैया गंगा जी है और उसको भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक घंटा आप लोग को हम सूरीनामी न्यूज़ को सुनाएंगे। तो दोस्तों क्या क्या हुआ है अपना देश सूरीनाम में, विदेश में क्या क्या हुआ है उसके बारे में आपको हम जरूर बताएंगे।

0: और दोस्तों आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज हम लाइव है दोस्तों। और जितने लोग हमें देख रहे हैं आपको हम प्यार यहाँ से प्यार पटाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से दोस्तों। तो और चला जाए तुरंत हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। भैया क्या हुआ है भैया, एगो नीदरलैंडर है नीखन देर तक यार रखा एक आदमी है। तो ये भैया के सिपाही बहुत दिन से खोजे भैया इंटरपोल पे रहा कि कहाँ रहा, और ये आदमी दौक रहा लुकान रहा। तो ये आदमी भैया चल गए और गईल है यानी कि सूरीनाम से कोलंबिया में भाई। और तो जाने कोलंबिया में क्या होता है दोस्तों, कोलंबिया में जो गए भैया तो वहाँ ड्रग्स के कारोबार में और एक के सबन पकड़ ली से ड्रग्स ट्रांसपोर्टन के बारे में। और बोले द एरस्तासी फोसात रख 6 तारीख जुनाई के। और बोले ना द मान अ लांगर टाइट इंटरनेशनल सीनियर लीड स्टॉम्प मैन से सबन के खोजत रहा। अब एंडलेक एक के पाई गए भैया सिपाही कोलंबिया के, और जे एक के पाई गए है तो तुरंत बंद कर दे इसे। और हिया नीदरलैंड बोले हमें तू अदमिया के लीवर कर वो के हम लोग खोजिला नीदरलैंड विल द मान लातन आउट लीवरन सो दैट हे दार फॉर द रेक्टर कान वर्शाइनन द फर्दर अफहंडरिंग फॉर द जाक लीग न्यू बेड बत्रोकन जिसील ऑथोरिटेटन के पास है दोस्तों। और चलते हैं हम जोगी महेंद्र जोगी के ओर हम जाए भैया। ये वही महेंद्र जोगी है सर मक्का वाला फे यहाँ पे के देना लेते महेंद्र जोगी। और बोले वो क्यूनन खीर आर बेदर फिंदन ओम तो वेरकन बोले हम लोग के यहाँ सूरीनाम में कम करते हुए नाम मिले है काम करे खातीन। और बोले है कम करता इंदर दाद मैन से जैसे सूरीनाम में जइयो तो कम करता नाम मिले है भाई। तू चिराग लेके खोजियो पहले मैया लोन बोला था फरामो लेके खोजियो तब वो कम करता सूरीनाम देश में ना मिले है। बाकी यही के सुनिए बोले बारा पीना करेला बोले स्टोइना सागी मिलो गिमुआ बीरीनो। अब बोली आहमा परसिया तरी से हार कर दे तब बोली कितना भरिए। तो ये बात है दोस्तों वो कुनन खीन आर्मेनियस फिंदन ओम तो वेरकन। बोले फेट इस दैट द बेफोल्कन नीट स्लेक्ट द कंपन हीव में द प्रॉब्लमैटिक फॉर द वाटर ओवरलास एंड बिसोंडर स्लेक्ट द वीकन टरवेल वो वर्गेटन दैट वो खीन आर्मेनियस कुनन फिंदन ओम तो वेरकन बेड्रेवन सिटन वर्लीगन टरवेल वो वर्गेटन दैट द बैंकन होगे रेंटेस एंड होगे रेंटेलास्टन वragen इट सो हास अनमोगलिक zijn om de vervangingsinvesteringen te plegen in het land mensen alhoewel er regelgeving bestaat binnen het CARICOM-verband kan Suriname haar vleugels niet uitspreiden naar de overige CARICOM-landen met haar diensten te producteren mensen. तो सूरीनाम के बात है जो कि भैया बोले कम करता ना मिले भैया वहाँ इंद्रदान फिर मान जाइयो खोजे टेमड़े मान जाइयो खोजे तो कम करता इंद्रदान ना मिले भाई। तो लोग जानो है पुलिसी ब्यूरो में भाई पुलिसी ब्यूरो है इस फ्लाइट में। और वहाँ पर भैया वो क्वेक चोरी भैल हैगा भैया दूध के बाल्टी में सब धरे रहा हाँ बाल्टी में टैंक में धले रहा और क्वेक चोरी हुई है बारे में जोगी बोले है कब का बोले हम लोग के हनीश मनोरथ बोले नो टच मी ते ही करते बोले स्कूल तो के टच करे तो घर में मसे चोरी हुई है। तो हेमंत बुद्धु आपको हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्र श्री भी आ गए हैं। आप सबको यहाँ से बहुत प्यार देते हैं दुलार देते हैं और कहते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेते ही रहो। तो यहाँ बताए गए अब वो चीज कहाँ मिली भैया, क्वेक के बारे में वो इंस्पेक्टर हमें यहाँ इंस्पेक्टर पिनास गए लॉन्डर सुख करे सगरों गए ताके इंस्पेक्टर लेन कि कैसे चीजों आ भैल और चीजों अख्तर द ट्रेन फॉर पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से चोरी भैल है। और दोस्तों जैसे शायद आप लोग को याद होगा कि बहुत चीज खैर फ्लाइट ब्यूरो में से चोरी हुए है ना, ये पहला दाएं भैया रखेरे और प्रखेरे जब सुनिए ये कुछ गैल हैं तो पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से गैल है। और ये बात है द पुलिस फ्लाइट नीड एट क्वार्टर टर्मिनल ऑन हाउ द सिल प्लांट फिनन आई थैट लो ओपन द ऑनर सुक मुड ब्लैक एंड द पुलिस अमतनार ऑल ना नीड बत्रोक सेन खमीर बेर फॉर ड्वेनिंग इन फॉर द खफालक स्टफ मेन से। लेकिन बात ये है कि कितना बार सब बोले भैया हम लोग के हनीश मनोरथ के और सबसे बड़का आर्टिफिशियर है हाइतियान और वो हैगा तुलन जाने शाया तो शाया लगे जाओ और पूछो कि कैसे चीजवा है। तो बातचीत यही है भैया लोन कि कोई कोई अपने काम पे भी बैठ के हमारा प्रोग्राम को सुन ले भैया हेमंत बुद्धू। तो आपको भी बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देते हैं। तो हेमंत अब देखो क्या हुआ है, बात ये हुआ है कि अब कैसे क्विकवा मिलेगा। सब कोई बोले कैमरा लगाओ भैया हिया आदमी अपन ट्रेन में कैमरा लगावे है, हिया चारों बगल लगावे सूरीनाम में भी कैमरा भैया। तो पुलिस ब्यूरो इतना बलांगरे जगह है हुआ पे तो फेल है इस कैमरा ना है, देसवा हमार कहाँ जा है भैया, देसवा हमार कहाँ जा है, फेलक्स है कैमरा चाहेंगे पुलिस ब्यूरो में लगावे के सेल्फ जहलीवन लगे चाहे लगावे के कि जो भगी तो देखिए कौन कमाड़ी तुर के ऊ भगल है। तो यहाँ बोले ब फेल है ब्लैक बेल पुलिस ट्रेन जरूर चोरी हुई है ना बतिया भैया बुद्धू। तो पोर्ट ना भैया चोर लोन के फ्रेय तू खांग है। आप लोग को बात और बताए भैया हेमंत बुद्धू और जितने लोग को है सूरीनाम में जगह जमीन है धर्मेन जे के तुलन जानो है फिया पी के रखी रही 5 बरिस बैठल हा। तो उसे बोले रहा कि अपन जगह जो तुल के हैगा हिर परसील खरंतन के बोले तुल के मख है जाय के एक दम करवावे के ओकर बारे में खरों कॉन्फ्रेंसिक एगो कांतोरु खुलल हाँ अपन बसके के ले जाइए। तो खरों इंस्पेक्सी पठाई मिनिस्टर लगे तो मिनिस्टर तो के बोली जा इतना पैसा भर वन इतना के फिर कांत में इधर तो जगह है ओकर बाद में जाइए नोतारस में खूब ढेर के पैसा भइयो ओकर बाद में तोर कागज जाएगा खलेस में तो खलेस वहाँ पर जाए के सब में स्टैंपल मारी तो ओकर बाद में तो जगह सब एखन दम हो जाएगा। तो इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं। तब तो जगह हुई तो 5 बरिस में कानी कैन 1000 आदमी खरन कॉन्फ्रेंसिस अपन जगह सब एखन दम करी से। तो आए ले भैया मिनिस्टर फन के बी बेगो मलाई आए ले भैया पेल के और उबा ने स्टैनली सूरो वीरो फन खरन बलेन बॉस बहिर खे बी बी के। तो ई का बोले बोले जितना खरन कॉन्फ्रेंसी के जैसे आयल है बौथर्स के रखेरिंग एनडीपी के रखेरिंग जैसे आयल है हेलमा खरन कॉन्फ्रेंसी के चीज अब बंद कर दी से कि अब कोई के नमा है अपन जगह एक दम करे बाकी कितना आदमी अब पैसा भर चुकल ला सेंट्रल बैंक में ओकर साख चले हैं बाकी जैसे ही रखेरिंग आयल बंद कर दी न्यू फ्राक रिमेन से ही कि जनता जो आयल जनता खात आयल है कि अपन खात आयल है जनता के खात तो ऐले बाटे बस सब बंद कर देसेगा। और यह का स्टेनली सूरो पावीरो फन खरन बलेत एम बोस बहिर के खेबी भी के। तो बातचीत ई होवे भैया राज लगा आपको भी प्यार से स्वागत करते हैं। तो राज तो ई मलाई जे आइल है खेबी भी में तो बोले खरन कॉन्फ्रेंसी के चीज बंद होएगा अब का बोले हैं बोले जितना खरन कॉन्फ्रेंसी के आदमी चीज ले रहा बोले सबके पैसा हम लोग तरह भरब बोले सबके पैसा तुरंत बोले बोले जगहियन बोले सही सब तुरंत ड्राई हुए के तो एक बारे में बहुत घींचा तानी दिया ना हमें भैल है तो उसे पूछेगा तो के 300 मिलियन अपने रैक्साक चले तो के पैसा है अदमियन के भरे के अब ओकर बारे में हम बताब कितना रैक्साक चले है खेबी भी के बारे में जो आदमी रैक्साक पान करी से और वो खेबी भी चाहे वो पैसों भरे के आदमी लोग के और इस सब के पैसा है ये ना और बोले हैं जो ना नमियन अनफ्राक कर ले रहा बोले वो नमियन के बोले कि पैसों ने तुरख कर जो ना जगह एक दम ना हो पावे तो एक बारे में बहुत जुगु जुगु भैले बहुत फ्राक ओके स्टेल करी से तो अब ई का बोले है स्वार्थो अन्ना स्वार्थो स्टेल नी सुरो पावीरो बोले है गा बोले ना बोले चीजो ऐसे ना है बोले जो अदमियन के सखुआ अबे रोंत ना भैले और सेंट्रल बैंक में पैसों भर दे से बोले ऊ पैसों बोले तुरंत भरवे मैं जो आदमी के साख रोंत हो गए जेकन ट्रांसपोर्ट मिल गए है खलिश के और बोले ओके बोले हमें ना मा के तरह दराई के नहीं इस सब के चलत तो ओहु एक दमो ले लेवत और अपन आदमी लोग के बांटत भैया हमार बात तो सफा है तो लो जानो है खड़ा मजूरी चोखा काम उजोनी के काम है बतावे के सोझा रास्ता हम कोई पॉलिटिक के नहीं देखी जैसे है ओइसे हम बताएंगे दोस्तों तो आप ये बोले हैगा एरफ रेक्ट नर एक नम रीच फॉर लीडर हैवन अफग्रोन नीट इन अमेरिका कोमर फॉर तुरख बतालन फॉर द दारफॉर बतालदे बदरागन alleen personen op rechtspersonen die het grond en conversietraject niet volledig hebben kunnen afronden, zullen de door hergestorte gelden van de overheid terug ontvangen. De minister stond er uitgebreid stil bij deze kwestie en benadrukte dat het beleid gericht is op zorgvuldige afhandeling van lopende en niet afgeronde grondconversies aanvragen. तो ये सब बात है हमारी जनता ऑंडरसुक नार संत अफग्राफिंग ग्रांड केक वॉर फोर खसैद ग्रांड केक में भैया शांति खुदावे सरमक्का में अब मिनिस्टर बोले एकर ऑंडरसुक के खाली एली खाल काम हुए हमारे देश में भैया और जब कुछ वेत होएगा तब देख यहाँ बतावे हैं द्वंग समुद्र कुन स्वार और बखरूतिंग फन खेबी भी बोले मिनिस्टर जो बोले हैगा बोले हम लोग के इतना द्वंग सोम हैगा फन 300 मिलियन ऐसे दे बदरा बोले deze uitgavenpost legt een aanzienlijke druk op de begroting van het ministerie. Volgens Suropawire is het noodzakelijk dat dergelijke schulden in de toekomst worden voorgenomen. Voorkomen. Euro apparetto mange admiloke paisa bare bole jeme muskala ya hai. 300 miljoen, 300 miljoen abe tore muri pe karja ar tu mange jo nermien kheto apan kinat raha. Okar paisa bhar ye bhar paiye paiswa to kai hai paiswa bhare ke. To ye sab amate santukhi तो सब कोई के बोले रहा कि जेके पंजागा चलो कॉन्फ्रेंसी से एक दम कर लो आदमी लोग करी से जो ना ओके सीकर है थे कितना आदमी है वो ट्रांसपोर्ट धर के कागज खेत के और कर्जा निकाली से बैंक में और जाए के घर बाऊ करके हुआ रहे हैं कितने आदमी है गा देखी सो के एक दम काज शुरू करी से आइट ब्राइट करे का पंजागा जमीन और मलाई आयल है जो एक बारिश से और मांगे सब चीज निकाले एंड दैट इज ऑन ईयरली मेन से दैट इज सीकर On earlet. तो हम जाए तरी तेलवा के बारे में भैया तेलवा के बारे में अमेरिका सऊदी अरबी के ओर हम जाए ना फरीनर स्टेटस तो सऊदी अरबी से फन ट्रोन अल्स ग्रोस्ट ओली एक्सपोर्टर वर्ल्ड अमेरिका बोले है सबसे बड़का ग्रोस्ट ओली एक्सपोर्ट जो करे दुनिया पे वो सऊदी अरबी है हेवन अमेरिकन न पोसिसी इन ग्रोमन दी दे जेनियल लंग वेर गडोमिनेटेड दो सऊदी अरबी एंड रूसलैंड द फर्स्ट मार्केट belangrijke verandering in de mondiale energiemarkt en versterkte invloed van Washington in de internationale oliehandel ke baat ke तो पौसे खत्म हो गया है ए हाँ दोस्तों तो ये बात है हमारी जनता कि अमेरिका बोले हैगा अमेरिका बोले हैगा सऊदी अरबिया फन ट्रोन अल्स ग्रोस्ट ओली एक्सपोर्टर वर्ल्ड तो बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा गया है तेल के बारे में दोस्तों लेकिन आप लोग को हम छोटे रूप में हम बतावत हैं कि कैसे है और कैसे ना है हमारे प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया एगो 14 बरिस के बातचीत हुए फिर 3/11 के और मन अनखो नंजो ने 14 बरिस लड़की के मिस ब्रेक करेला भाई मिस ब्रेक कर ले रहा हां रांच द्रिय फे तक यार रखी को आदमी 43 यार के एक आदमी ये भैया का करे रहा, ये ससुरा का कल रहा मंगलवार के भैया, मंगलवार के एगो 14 बरिस के अपन बीर महिष्य के एगो लड़की के भैया सेक्स वेल मिस ब्रेक करी से ओकर माई द मुदर फन स्लाफ तो फिर दे दान गिफ्ट और बतावे गए कि ये लड़किया बोले नर फोर को मद द मान हैड महिष्य में टू स्टेमिंग फन द मुदर अन लिफ्ट गेवन सो हेवन न लतूर मै वा बिटी वा के एगो लिफ्ट देवाए रहा बीर मान के संगे तुन द मुदर इफन लातर बेल द लातर जब बेल कही से अपन बिटिया के तो ओकर या घरे ना रहा तो न रीस टाइस वास नाम से इस दिन सांसी नीत ऑफ इस दिन आई तारना उठाई से ओकर बाद मिल रही से कई रमिया का करे भैया उन लड़किया के 14 बरस के लड़की के ले ले भैया तू जाने खोर देनुआ वाला घरवन बहुत ढेर है सर नाम में समझ गए ले ना घरवा आज मैं तू रहे हैं पेंशन वन के बाद बोली ला मऊ सालन हमारे जाने हैं कि कौन खोर देनुआ की बात हम बोली ला पेंशन वन भैया वो तो ले के जइयो पाचे खोर देन लग जाए जैसे नाटक के पर्दा खींच दिए समझ कि भीतर में कोई ना देखे कि कौन हुआ जा है और कौन चकल्लस हुआ अंदर हुए है। तो ये बात है श्री नाम के खोरदेनुआ वाला घरवन के बाद बतियाई ला तो ये आदमी 14 बरिस के लड़की के जो मैया बोले रहा बीरमान हमा बिटी हुआ के तेरी घरे पहुंचा दियो तो ये आदमियों के ले के लगा लगा जाए के खोरदेन वाल घर में घुस गए भैया और ओके जाए के वहां पे मिस ब्रेक करी सेगा सेक्स वेल ही मिस ब्रेक इन पेंशन ना द दास het meisje thuis afgezet hebben. De moeder schakelde natuurlijk op je eigen buitenke. Hoe op je gordijl wala ghar me na loha wala ghar me op rehi chakki piese ha. De loha ke ghar me op utrali ke piche jaike. I bhaiya ho ya i baat hove latur ke baat hove dosto. Latur me ke rehe aap loon jano hai. तो ये सब लातूर के बात है जो आप लोग को हम यहां पे बता दिया है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को बढ़ाते बढ़ाते। अब देखो भैया सेशन 20 मिलियार्ड के बातचीत हुए सूरीनाम में भैया एसआरडी के सेशन 20 मिलियार रैम सेशन 20 सॉरी मैं से सेशन 20 मिलियार खात नार द स्कुलदन लास्ट स्कुलदन जो कर्जा भैया ओकर पैसा भरा है सेशन 20 मिलियार भाई यहां पे बताए गए हैं बोले हैगा दिस यार टू इरेशन सेशन 20 में wordt opgeslokt met door rente, oplossing andere financieringskosten en staatsschuld. Uit de nota van de wijziging blijkt dat er via het ministerie van Financiën en Planning 26 miljard is uitgetrokken voor financiële verplichtingen die voortvloeien uit bestaande schulden. Maar ja, te deko, ja, piketra, ketra, cheat legal, paisa ke baare mein, miljarden ke baan cheat hove hiya, dosto. Hum bolu tuluk ke bata di, ki dektoraal financiën 25,38 miljard, aur hiya batawe hai, en belasting ke 0,91 miljard. तो ऐसे ऐसे पैसा के बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिखा ले दोस्तों आप लोग खुद पढ़ो और समझो। बाउर सूरीनाम में भैया हमारे सरनाम में गरहन लगल है भैया जैसे कोई के शराप लगल है भाई। अरे जब पानी से छुट्टी ना है तो चोरन उधिया है, चोरन जो उधिया है भैया तो हमारे रखेरे कुछ कर ना पावे फन है स्त्राद सब चिन्ह छित्तीर के भित्तीर होएगा भैया रास्ता बरखा मारी से देश इन बुराई के धरती से भैया सोचो। और मित्र लोग इसे दिन बोलेगा ऑफिशियल द तरक्कीर फन एल नीनो इन द स्टिल ओशियन बफेस्ट दिट नेचुरलक क्लाइमेट इफेक्ट कान uitgroeien tot een krachtigste El Nino sinds het begin van de meeting। तो बताए गए है भैया सूरीनाम में घर में आदमी के पानी है यहाँ फोटो देखी घरवा आधा बुड़ गए भाई आधा बुड़ गए है। और बोले है का बकेन फन मीटिंग नेगेटिव फैक्ट में एक्सपर्ट वॉश क्यों करेला कि वेरल तो एक एक्स्ट्रा गर्म होगा जैसे इसे पानी इतना जोर बढ़े है ओवर स्ट्रोमिंग हुए है झूरा हुए है आग लगे है क्रास्तक स्ट्रोमिंग होएगा और अमेरिकांस मेट्रोल के दिस नोआ इस एरकल्स फॉर 63% दैट दिस एल नीनो इन द नायर इन द विंटर पीक एंड डार्मी बहुत तो ग्रोस्ट ऑयल गेरिस्ट्रेड तो इतना पानी हम लोग के देश में भरे हुए चारों बगल बुड़ल है गाय गोरु के बड़ी आफत है जनावर के बहुत आफत है खाना पीना का आफत है हमारे जनता के आफत है काम धंधा ना जा सके करे ठीक से भैया तो ये सब बात है हमारे जनता बड़े को फनों को हिस्त्रात के रास्ता इतना चित्तिर के बितिर है और कोई बनावे ना है जो उन समय पे संतों की रत सब कोई नूर मोहम्मद वागरियावत रहा नूर मोहम्मद वा गरियावत रहा बोले ई का करे फे हा फे के गरियावत रहा अब तो भैया और खराब हो गया रस्तवा और बने न है अब सब बोले बैताली का करे बैताली बोले हम बदरई बाटी ऐसे थोरो बोले मीवा लुक मोनी बोसी फॉर ट्रैकिंग फन फन हो स्ट्रार को फॉलो फन ट्रैक आउटफुरिंग्स फोनस एगो फोनस चल ले भैया बैताली के और फोनसवा पढ़े के इतना लाती हुई है रास्ता सब छितराई गए हैं एमा बोले हैगा वन आईडीबी अने बोले वन ऑफ द आईडीबी बैंक स्टार्ट इज ऑन स्टार्ट सुरीनाम एरफान तो वेर होदन ए रेकलक फोनस आउट टू फोन बतेगन दैट है डी फैक्टो दैट ऑल सुरीनामस बेदरीवन बे टेंडर्स फ्रॉम द आईडीबी बैंक नीट मेयर कैन रीगन ऑफ द सुरीनामस रेकलक मख तो ये माँ बहुत लंबा चौड़ा भैया बैताली के बोले है आनी में बतराई बैताली बोले फरतराखिंग भैल है रिहैबिलिटेट प्रोजेक्ट फन फन रूख स्ट्रात स्लंगन हाउस स्ट्रात के बातचीत है बोले है का स्टार्ट ओम खान फोनस भैल कर तक देंग 10 तारीख जुली 2025 में और बोले है बदरेव रियाखेदार में नमस्कार के पॉलिटिकल डिस्कशन दी द अफकलोपन प्रयोग ओवर प्रोजेक्ट इज ऑन स्टैंड तक कब बनी कब ना बनी भैया सीफा यानी वार के को बसवार गए है और बोले वैसे वार ऑफ हेयर अब और दिलिंग वास आउट को फूड फोकस बाय ताली फॉलो द पाथ नहीं इतने तो रख अप्रैल आई नो रखिंग ऊपर तक हुआ पे भैया फोनस ऑनस जितना चीज है उस सब थोड़े देखे कि रखें थे जनता इतना दुख काटे है इस अकवाम इर्दर अरे का बोले अपलोस कर ले कि हम लोग के देशवा के रस्तवा स्वतरी बने ऊंची छुआ पे थोड़ो भैया हुआ आलस कम खुद आ बोले तमारा हे अरे चीज बोले मूर्ख कम मूर्ख बिहान तमारा ते मूर्ख करत करत हमारे जनता मूर्ख करत करत हम लोग के और रास्ता और खराब हो गया जनता बहुत दुख काटे तरी जाए आम्स्टरडाम की ओर भैया आम्स्टरडाम में और परी आदमी पकड़ा ने भैया आम्स्टरडाम में एगो जबर एक्सप्लोसिव भैल आम्स्टरडाम में बीते हुए रातों में और बोले हैगा कितना ओ तो बस खादक हो गएगा एमा सिपाही सबके खोजे है कि कैसे है कैसे ना है इन नख वोंदाख और फ्राइडाग के एगो बड़का एक्सप्लोसिव भैल है एगो स्पोर्ट्स कोल है रिमेनन में और उस दौर पर बन में आम्स्टरडाम में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भैल रहा तो ये बात है रकेश मुझ भी आ गया हमारा प्रोग्राम में तो भाई रकेश आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं तो जनता हम जाए तरी अमेरी वेत है भैया अमेरिका बोले उज्जर घर हाँ उज्जर घर है श्वेत है ईरान अकॉर्ड में ऑन मंदलन फन कैरन प्रोग्रामा अरे भैया कैसे में के विश्वास करी तुम के भाई ई बेर बेर बोले है ना ना भैया ना रकेश बेर बोले खुरुचेस इतरक डंकी वेर रकेश तो बोले वाशिंगटन बोले हैगा अकॉर्ड ईरान कर दे कि जितना ओकर कैरन वापस सब ओंधमांतल करे है हम ना जानी विश्वास करी कि ना करी दैट लेग नीट ओवर इन द कोमे में द ब्रेक ने ईरान से स्टार्स मीडिया दिस टेल देम दैट ईरान फर्स्ट होत ऑन द ए सेल्फ द कंट्रोल द होल्डन ओवर द फरेक्ट यूरेनियम और बोले हैगा ई बोले है त्रिम बोले है और ईरान बोले ना ना बोले हम अपन यूरानियम के अपरे से बोले कि हम ओके कंट्रोल करबे, बोले ना अमेरिका करेगा, मगर फोकस अमेरिका तेहरान में बोले है, बोले इंस्टेम कर दे से न्यूक्लियर मटेरियल फनीतक वर्ड वो फनी सो ईरान अकॉर्ड सेड मेड इट ओपन फॉर स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मुज एंड सो हैड लैंड पास टूगांग krijgen तो सेन बवरोरन ते गुदन als hij zijn verplichtingen van de overeenkomst is nagekomen, want Iran is een bevriesker die ze beloofd mangen hormoons, cholesterol, hormoon, die een botier pas en ook een telwasasta is. Toen Rajesh Kisun bij haar gegaan is, Rajesh, aapko bij haar ze, hem behoor piaar deten is, Surinam destak. तो इतेल के बारे में भैया जे ओतो चलावे हुई जाने का ही वजह लेगा, लेकिन हमें जाना एक दुनी तरी सस्ता भले आज हम बोर्तो पास भली ते तरी हम देख ली बाटी भैया कि कैसे है और कैसे तुरिया ना है हमारे जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम आम बढ़ाते हैं सुनाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्विक के बारे में जो रहा हम बताए रही क्विक दीपस्ताल जो स्केयर फ्लाइट में रहा, और यहाँ पे आए नवा न्यूज आई लेम देखी ले दोस्तों बतावे मोकल का बत्रो के नहीं पॉलिसी ऑन द सॉक इन साकर क्विक दीपस्ताल अरे बोले सिलेंडर है जाने खास फ्लेशोन सिस्टम है तो सिलेंडर 11 को चोरी भाई ले पॉलिसी ब्यूरो खैर फ्लाइट पे बताए रही और बतावे हैगा और फॉलन इज कि ई केमिकलियम जो है और इसे पे को कंटेनर में बंद रहेगा अख्तर ने पॉलिसी को ट्रेन पे सिपाही के और ऑफ द इन कैपिटल द इलेक्शन ऑन सुक करे कर बारे में दोस्तों। और बोले द सिलेंडर्स वेयर रेकनोमन बे इन ब्रांग बे द कंटेनर। तो यहाँ पे भी बतावे द पॉलिसी वर्स की उधर खबरें फन क्विक स्कार्डलिक केस फॉर द सामने लीविंग क्विक वन अमिलल है बाकी हो फ्लाइन वो अपने मुखलक बत्रों के नहीं पॉलिसी ऑन द सॉक इन साक अने क्विक दीपस्ताल के बारे में तो लोग जानो क्विक वास सब हम सोना खोजे है ओमा जहर है भैया और क्विक इस खफार में से और क्विक इतना सब वेलांत में खबर करे कि क्विक के मछली छिरी खाए लाइक ना भैया वह सब में बीमारी है क्विक इस खेमिस इस। तो ये बात है हमारी जनता। अब देखो हम जाए तेरी ब्रिंसी को वो लगे भाई ब्रिंसवेग का बोले हमारा ब्रिंसवेग तुम्हारा ब्रिंसवेग एक्सवीपी बोले एनडीपी पार्लियामेंटर बोले ईबी जोंस बोले है बोले फ्राक्स एक आफवार ओम दोनी ब्रिंसवेग बोले कि इतना निगा तिब्बतिया एनडीपी के बारे में बोले जो क्वालिटी मुबा तो बोले जो ना कर पाए तो कहन निकल जाए फोकस एनडीपी इज दिस मनीर ओम त खान बोले हाँ पर क्वालिटी पार्टनर से लेकिन तो लोग जानो भैया ब्रिंसवेग के मुंह जो है भैया जबड़ है उस बोले है और इस सबके नाम वही लगे है 100 ओम खान अपन क्वालिटी पार्टनर से बोले ही प्रोक्रीत हैगा वो बोले ब्रिंसवेग वर्ड सुप नोइट सो हेट खेतन आल्सो वर्ड अपखदीन। और ये बात है जो उस बोले है एनडीपीर बोले काहे के बोले क्यों इतना नेगा तिब्बतिया है तो चिनुआ के देश में जाए भैया वायरल प्राइस ओरी प्राइस रिलेटिव लाख हो अरे भैया चिनुआ बोले रिलेटिव दुनिया भर के तेल के प्राइस सका करे के बोले 20% फॉर वायरल प्राइस ओरी फोर्सिंग इन वेखफालन और हमारे से नाम में मांगेगा सिटवसिया का बोले सब्सिडी निकारे और तेलवा और महंगा हुई हमारी जनता। ये बात है सूरीनाम के सूरीनाम के। अब देखो भैया कड़ाका में सूरीनाम में को जगह नाम बा कड़ाका बोले कोकाइन जरा यारे बड़ा जोर से मन करे हंसे के कि कोई सुन न पावे वो बतिया है तू तो बोले कड़ाका में 100 किलो कोकाइन 100 किलो मरवाना बोले जरैली बाटी है भगवान सिपाही कुआ कैसे विश्वास करिए तोरे घर में से कुएं चोरी हो जाए तू जइयो भैया कोकाइन जरावे अरे भाई पिसान नस्कार सो जाए भैया बड़े वाला आवे के समझ गए लो हम कुछ ना बोली ला
1: तो
0: तो कराका में भैया इतना ढेर बोले कोकाइन सेवन जराई से, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरी चिल्लाए चिल्लाए खखार खखार हंसे हैं। हम लोग के पॉलिसी के सना में विश्वास ना करे भैया, बैंक में से ना उस सबके क्लेश में से भैया सोना चल जाए, पैसा चल जाए, दृश चल जाए, क्वेक चल जाए, तो ई कई कौन कैसे तू बोलियो भैया कि कोकाइन जराई से। और हमारा हनीश मनोहरत बेचारा बोले मी आनू बोले नो तेज मी बोले हमें ना तेज कर बोले हमारा हाथ बड़ी लंबा है। तो यहाँ बतावे गए भैया है किंग ऑफ ड्रग्स प्रयोग सीफत इन मार्च 2017 तक तो सीफत यूनी तो मार्च में पूरी मिलल है भैया को कहीं ना मिलल है तो वो होएगा भैया तरी सोचो तो सिर्फ यूनिट तक बोले कि ना द फर्स्ट को की ने वेट ओ सिर्फ 1350 मिलीलीटर फ्लुइबार को कहीं ना फर्नीता फर्दर बस्तों द पड़ता है 189 1060.34 ग्राम मरवाना 12,706.68 ग्राम हाश 235.5 किलो अने असीसी पेलन और ऐसे ऐसे हैगा। तो बड़ा मोइले के विश्वास करे के राजा का बोली हम सुचित लोग के एगो मोई वाला सोका सोका सुना दी तुल जाने सोका सोका तो अरे दादा प्रिंस हलीमा भैया चटनी सोका सोका। अभी हम आ जाएंगे इस गीत के बांध में हमारे जनता

ली और क्या क्या सोका सोका प्रिंसेस हलीमा का ये जोंग है और ये चटनी सोका थी हमारी जनता जाने सोका सोका पे ओ तो मातिस गोड़वा हतवा हिले लगे तो चलो जाने चीजवा कैसे जा तो दोस्तों हम चलते हैं और आगे को लेकर तो अर्चना देवी का हरनाम भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए आपको हम स्वागत कर चले हैं अर्चना जी तो आप लोग जानो हैं जेकर जेकर जन्मदिन होवे फरियारी होवे है तो गाना होवे है बजाना होवे है नाच होवे है खवा कटा है कहीं कहीं मुर्गा कटा है कहीं कहीं क्या क्या होते भैया माँ वे माँ का अलमाल अनहील लुई का दाम में फरियार दा खुद या रख है दरबीर वाला माल हुत खांत अलमाल इन ओवरऑल इस दाद सोच नहीं लाओ सिर मार इट इस वेल इट्स अंडर्स न्यू मेंस से ये को फिर और फिर तक यार के आदमी भैया वो कर जन्म दिन रहा अरे अरे मियाँ बजर मजन में रहा खूब नाचत रहा गावत रहा ओ हीरोज आए के ओकेस को तू पकड़ के और हाथ बोई करके और ले के ओके चला गए ले मैया ना गए खबा खवावे किनवावे ना पकड़ के बंद करी से धोई लात मार के फर ये के रोज भैया ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया 2020 जनवरी में एरो अमेरिकन डॉलर सफर दस्तर कर ले रहा अपन वेर खीफर के बोले पे वरों को दापे ही मुझियांग उच जुआ कर ले रहा तो बोले ये रमिया नादत बिनेत ब और एक हल माता की इधर वोट ऑनलेग बोले पैसवा कहाँ जा है तसब जो ऑन द सुख करी से भैया करीब 8 million एसआर दे ये आदमी काम पर से फॉर दस्तर कर दे रहा भैया और मेरकल इस द फॉर द तो ये जो रोज फरियारी है ओ ही रोज के ओएम और खड़बोट के लिए के चला गए ले वो कर फरियारी मनावे तो अपन पास के इतना बना दे करी से मीन से बोले है चोरी करियो भैया तो कर सजा तो भुगतना पड़ेगा है कि ना आप लोग सबको जानो रमावतार सिंह के वो हैगा का बोलेगा फेस के आदमी है एक रूम है रमावतार वेस तो रमावतार सिंह के बाद बतियाला एक बारे में रमावतार सिंह बोले है बोले 405 तक दर्जन अमेरिकन डॉलर से नाम भरी सेगा वेहीकल लाइसेंसी किनी सेगा एसटीफीएस खातिर क्यों वहाँ पे समा वही का देख सके हैं और बोले है फीस प्रेसिडेंट जोत्रे स्लान किनी से बफेस्त करील है और बोले दही समात्रियाल बत्रे फन को फूल अंदर वेर स्टेल एक नो वेस्टर मावतार सिंह ने प्रोग्रामा लाला ऑब्जर्व वेब पे बोली सेगा दिस ना ब्रोथ एंड स्पेलन अनबिडन एंड हेड फल खरीद इरफान वर्ड दोर हिन खस्तियाल एंड वही का खाद मोरखन फरस्तात इन मैं बोले मैं एक्शन हुई तो शुरू हुई है दोस्तों और बोले हैगा अने अने यो किस त्रोबी नंगा अफोलक इबाद बोले है इन नींद रखेरिंग सो बस लेते हैं और खीन वही का अत्यसंदन यो किस त्रोबी नंगा फोलक बना दृक्त ने एक नंबर मावतार सिंह खेफ अंदर रखेरिंग इन सेंस वेल तो बकराई पर ये विल वेल ब्लाइव हैं सेतन ये विल नीट वेक खयाक्त वर्दन ओम दैट ये खीन ब्रूट एंड स्पेलन हैप आंखबोधन वर्दन आदर्श एरोप कलयर दौर द नमोतार से बेना मी कोट मी बांधी यह बोले वो बोले एकदर बोले प्राइस कार्चे ना देते बस कोइंग वर्क नोमन तो बहुत मांगा था नमोतार सिंह के बारे में और बताई सेगा कि इतना इतना पैसा लंटी भरी से और लाइसेंसी किने की किसी नाम में तुम वी का देख पाओ भैया या भैया एक आदमी भैया तुलन जाने गियरबॉक्स कौन ची के बोले तो हमने नीलांत में बोले ला कॉपलिंग्स ब्लॉक हिल सिंपल कॉपलिंग्स ब्लॉक व्हाट इन नीलांत से सिर नाम में बोले गियरबॉक्स है दैट ग्र से करे तो गियरबॉक्स का नाम कैसे आए भैया पहले जब मोई से अपन कॉपलिंग्स कॉपलिंग वाला दबाइए ने क्लच प्लट वाला दबाइए तो जब दरियत बोले क्र तो के बोले गियरबॉक्स कि गियर में चल गए बॉक्स वही नाम श्री नाम में अब तक से बोले गियर बॉक्स मही कॉपलिंग्स बॉक्स तो
ik ben 49 jaar ken me bij gearbox ke bole u datara he to jane si naam ik sab kade wat jane bole amana datara yung har ek chij je koi kuch jane banan bole u datara hai chijwa ki yaar tu jane u datara hai te bhaiya ke hum bhi bole lai datara raha ek wo beg dehi hai bhaiya lekin ee datara gearbox ke kaun chakal les kari se hui to batiya hai haan ई भैया लोग ई गियरबॉक्स के अदमिया भैया ई दतरा का कर रहे गियरबॉक्स के दतरा आदमी लोग से सूरीनाम से डॉलर लेवत रहा अमेरिकन डॉलर लेवत रहा एरो लेवत रहा अब बोले तोर हम कपलिंग्स बात मतलब गियरबॉक्स हुआ बोले एकदम मौत रिफिसी कर अब कि जैसे नवा हो जाए हाँ बोले जैसे नवा हो जाए बोले कि हम ऐसे तो मौका बोले गियरबॉक्स बना देवे और आदमी लोग से पैसा लेवे भैया और बोले तो नीतू हेवन आठ आदमी बोले गैल है बोले दतरा के ऊपर गैल है नालिश करे कि हमार गियरबॉक्स हुआ बोले ना बनाए से और पैसुआ खाली से ये के बोले दतरा भैया ने पुलिस इधर मेर पर्सोनल स्लाक्टोफर सेन कोर्डर फन वेरिक्वेजर फन फरदाक in het kader worden personen die ineens geld hebben betaald voor reparatieonderdelen om import van voertuigenonderdelen zonder het afgesproken te hebben ontvangen. Toen ik gearbox aan de kabel gearbox kreeg me van ja in de garbaraije. Maar ja, in ja, we hebben de kila ik wil bouw jabber foto daaral he. Likale barka me sunpe. Kabinet van president, een monster dat ons verslindt. Arre dada, iets iets ke bol deze bhai. Ja, bataye gaye hai ki voor 2026 me bole president ruim 1,2 miljard SRD toegewezen. Van dat bedrag gaat bijna 830 miljoen aan salarissen van 2200 personeel lenen uitra kamkarten 1,2 miljard maar 830 miljoen kamkarten ke paisa bhara hai een gigantische som die in geen verhouding staat op de prestatie van dit apparaat op bolego van efficiëntie naar inflatie 1990 mee en bolle 50 kam karten ke bolle mopstijde bhaiya bari lamba chowda ekar bare mein likhal hai lekin hum upar bata dela host likhal hai cabinet van de president a monster dat ons verslind to ekar bare mein rupesh jagarnath adviesraad DNL gelikie sê Suriname kan zich niet model niet lager veroorloven het kabinet moet worden teruggebracht tot een functionale kern toe je waant

gelanceerd door ambassadeur in Israël Batana Susuka Hetonia. Likele S-U-S-U-Su-Su Likele, ja. Susu officieel gelanceerd door ambassadeur en SLM Bhai. Toen ik er waarin betaai, Susu, hij kontje he. Bolle in het Surinaamse museum vond Chautari Yunak officiële bolle hege plaats van Susu. Een initiatief van 27 april 2027 mee. Bolle duizenden invloedrijke personen van Surinaamse afkomst en mensen met een warm hart van Suriname blijven wil brengen in een passenger terminal Amsterdam. Het doel is om de gezamenlijke projecten te identificeren en te ondersteunen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. De Susu met de heel lang vreugde van de Susu Summit die april te Ibaat he en Amsterdam ke waren me dosto lekin hum aur aage batai bhaiya hua kya Suriname desh mein tulon jayo tab dekhiyo bor thangal le to me ne jane are rasta ke bor thangal le u to official he baki bor to me tin char go bor thangal le to ni jahan likal persil takup ta taxi ba ta e he ta uba तो मामी जी के भी हमारा नमस्कार तोनी जी तो बात ये है कि अब क्या हुआ तू जाने है दमुआ पे पाल गाड़न ले तो ओमा दुनिया भर के भैया बहुत आदमी अपन अपन रिक्लाम ठोके रहे है तो अब का बोली सेगा श्री नाम के रखेरिंग बोले आनोमाक बोले बोटू लगी बोले अपरे तुलो निकाल लो नहीं हम अपन ओ तो पठाबे हम में तेल जरी कि सब पाल मरत लोग के रिक्लाम बहुत निकाल के तुलो अपरो निकाल नहीं तुलो के कस के बूटू लगेगा तो जब कोई अपन बोर्ड टांगी से और लांटी के ने स्ट्रातन पाल में हाल तू दिने वेक में से अंदर स्क्राइट चुन खरोत खरोत बिगी बिगी बूटू वन तू जाने लांटी तो पैसा खोजे कि कहां से हम निकाली न तू लग अब देखो का भाई ले अब का भाई ले अब बातचीत ये हो रहा भैया ऑन फ्रीड ओवर आउट ब्लेवन फन का फी आउट बता ontvangers wachten op de 1800 SRD. Toen kitra admi bole he ki kakafe konchi he. Kakafe konchi he. Kakafe na he kamer van koophandel. Kafe ka he. Kakafe asai sanam me sapawe he. Aur konchi he okar bole he ga. Koopkrachtversterking. Santoki ke tijd pe 1800 rupia admi log ke extra mile hai. JK yani ki inko kam thi bhaiya. Ab kaam bhail hai. का भइल है कितना आदमी ना पाइसे कितना आदमी ना पाइसे तुलन जानो ही रखे रेंगो जब बैठे हैं तो कम करतन के पैसा ना रे भरे एक तो ई ना अब देखो काका फेलोन आदमी लोन हमार बुढ़िया पुरनियन बैठ के अगोरे है रोई काली कि कैसे हम अपन कोप करा फर्स्ट तैर के वहाँ पाई तो यारी कावासी गीता सी गुलाम भी आग के पहुँच गए हमारा प्रोग्राम में तो गीता जी आपको भी यहाँ से बहुत बहुत प्यार देते हैं साथ ही साथ रोई काली को बहुत प्यार देते हैं जो लंगडाउन से हमारा प्रोग्राम को और इतना जोर तोर से सुन रहे हैं तो रॉय अब देखो का फी जोन है और हैगा कोप क्राफ्ट फर्स्ट टैंक आदमी ना पाई से आदमी लोन अब सोच में पड़ गए हैं कि हम कैसे मुर्गिया की ना हाँ भैया ने रकेश केप तक को भात केप तक को भी पलवन में मार ले इंदर दांत तो राजेश जंगली आपको भी हम स्वागत करते हैं तो जोन बर्तुआ पे टांगल ले भैया कि यहाँ मुर्गी बिका बकुआ बिका खेत बिका है कौन ची बिका है दिमुत आलमाल दराई जनानी करे लांटी तो के बूटू दे जब तू लांटी के रास्ता वाला पाल में मल्ले रही है तब और हो सके एबीएस भी ना मांगे दोस्तों तो बातें दिया ये हुए है का काफी के बातें आदमी क्लाख करे है बोले हम पैसे ना पहली बाटी बोले हमार पैसवा कब है रोज जाए जाए बंकुआ में पैसवा डाले है अपन और देखे ने बड़ा दुख के बात है राजेश बड़ी दुख के बात है कि लांटी के चाहेंगे कोप
kraftversterking 1800 watt देवे के और हमार बुढ़िया परनियन जे के पैसा ऐसा ना है उ सब जा है और जाई के पर बंक पास डाले हैगा खेल ऑटोमेटिक

meer. Oh, de keer gewoon nul, hè. Teleurgesteld komen die mensen naar huis. Oezap zo je oisie ze hem. Rajabe, kabole, hè. Or murgia killebe. En rakes, murgia killebe. Appel lerken kan banadebe. Dal kille, chaur kille. Kut sauda pani kin ke jabe. Ohi paiso atara suwa masse kine. Oisie hand jolawat. Teleurgesteld. Or thuk lilat bicharen. Juran oot. Upper se barsaat ke mausse me pani me bicharen. Bijet jahe. God tab tab pani me jahe. Or paisa na milal bhai. De meerder personen die afhankelijk zijn van de overheid steun trokken naar de pinautomaat. Om het te goed te opnemen, maar constateerde dat het bedrag nog steeds niet wat hoger gemaakt naar hun moneycarta. Sommigen vergeleken de huidige situatie met de onder vorige regering. Toen iemand ziet, hey dosto, de bollega, toen Chan er was, werd de KKV op tijd gestort. Oude bollega zijn toch hier aan te bollen, hem leuke koopkrachtversterking, en pijsa op tijd stort, wat daar. Jepse Simon Rusland eil, he, pijsa hem leuke opstort, maar toen hielo. Na baithailo baato mausi mausi lon baithai se ta ab jao ab naro bole jab khet chidiya chum gaya to baat mein pastane mein kya reh gaya hai na Gita ji to ye baat hai to yahan pe likha gaya mino abino wamoni and me reikan tapa kakafe ala leisi te ayu regering dis mus pai akakafe na one problem den sani dis no boom zei hij volgens haar had zij de moment zelf geen geld om voedsel te kopen terwijl zij bij de automaat stond vroeg zij een voorbijganger om hulp een andere bijvoorbeeld riep haar toe dat er sprake zou zijn van een storting waardoor de uitbetaling nog niet was verwerkt bhaiya o sociale zaken kabole he bole administratie afhandeling met de financiën. Bollega Servin Falis bevestigt dat de betaling van de KKV nog in de administratieve afhandeling is. Volgens hem ligt de verder verwerking momenteel bij het ministerie van Financiën. O, Atala Sawa Khatin, Abhaya non roe he. Jeke na he, u roeiga na bhaya jangli. Jeke ghepet me bhook lagal he. Chota chota ladkan he. Maya ke na he, bappa ke na he. Ka kari bhai. तब उस सब के मुंह में से सराप निकलेगा दुख होई आंख में से पानी चोई और ई रखे रे ऊंची जुआ ना देखे है और ना देखे अब बोले संतोखी के समय पे हम लोग के पैसा अपडेट मिलत रहा और अब ना मिले है तो ई सब सराप लगी भैया सब के सराप लगी खाई क्यों है आदमी लोग के इस्तलीफस बहुफता है जो उतर पास ना है तो कुछ ना है वो तो हुआ धर के आदमी बेस पे चल सके है वो तो हुआ ना रही प्रॉब्लम ना है ब्रह्मुआ ना है प्रॉब्लम ना है फिल्मुआ ना गईले देखे प्रॉब्लम ना है मैं घरवा में खाइकवा चाहिए रहे के तो इस सब के साथ हम इस सब के दुख में हम शामिल है एंड या व्हाट मुते शेख मेंसे अब जनता मुते खून खुलत है अब पैसा लेनी है नहीं करके अब अपन जीवन को रकम तुलन प्रॉब्लम ऑप्लोस कर तो दैट द 1800 नीट weer een gestort wordt. To hamar janta aur aage hum jai hai Haitian ke bhaiya Haiti der de hele week Haiti gedwongen tenuit de wijziger van weken oorlog symboliek ook een des mein bada ladai hue hai aur tu ja rahe Iran ke aur kon kon des ke kapde lo jo lade us sabke naam America mein week hua hue tari se bata de to तो ये सब बात है हमारे जनता और हाइती बोले है ओपनिंग वेस्ट रहे जो फीफा में रहा वेरल कैंपियंस का पे खदोंगन है अंतवेर फंड तीनों तो फरांदर ना दर वेरल फुटबॉल बॉन्ड अल अफबेली फंड ओलोक सेन ऑफ द शर्ट फॉर बोट की तो के बोट अपन ट्राई पे नमक है कुछ और लोग के चीज के तीकन फीकन करे के ओ एक मारो सब के फरबीर के तो के कौन कम तू सपोर्टर बाटे तू सपोर्टर बाटे भैया तो के चाहेगा स्पोर्ट के चीज जाए के और लोग फल लोग के चीज कौन चीज जो यहां पर कपड़ा फपड़ा पे धर के हुआ पे स्टेडियम में करिए तो ठीक करी से हमार कहना ई है आज स्पोर्ट मैन मैन द मुझे स्पोर्टिव ओक आई कैन यू हैव बीन नेक्स्ट टाइम कम इन और लोग फन वीरल एंड वार दैट ओ मन दैट नो मी दैट मुझे खेल स्पोर्ट Zo is het mensen, zo is het toch. Toen we in Nederland die balwa kelen.
तो और आइए भी बाल खेली दोस्तों, एक बारे में आप लोग जइयो और हमारा दोस्त राजन द्वारका स्पोर्ट के बारे में जाना बतिया है, तो कर काम में हम दखल न दे, वो कर काम है। तो अब ने का भइले पोलन पोलन क्लिम ऐ सुंदर ऐ तोनी, हाँ पोलन भैया कुछ बताए तू बड़ा जोर पोलन जा है तो द पोलन क्लिप ऐ सुंदरिंग ऑफ यूरोपीय मिग्रेशन पैक्ट, ओकर मतलब है गा भैया पोलन है गा इस नर एकर अपरेस उ बोले यूरोपी से जो यूरोपा के असल सुकर से मिग्रेशन है der Freitag in Werking ist getreten, Herr Land soll kein extra Asylsuchers akzeptieren. Und sie wollen ihm eko extra Asylsuchers namangila Polen wollen. So wollen sie, das Land ist freigestellt von der Herverdeling von Migranten binnen der Europäische Unie und dabei horende Onkosten. Dus Tony, jij mag gaan, jij bent geen Asylsucher, jongen. Dus vakantie, je kan je mangen, jij, dan mag je gewoon naar Polen gaan. Dit is puur namelijk voor die immigranten. Doen aanweer van ja, देखो का भइल है। और आगे को अपना हम प्रोग्राम को सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। और यहाँ पे देखो भैया सुरोपा वीरो जो बोले 300 मिलियन भैया ध्वंसों के हैगा जनता के भरे के लांटी के भरे के और जितना आदमी के आई दम जगरा कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंसी के ओके मांगे हैं सब तरह करे, तो आशा समझ भी आ गया है। तो क्यूबांस औरत भैया क्यूबा एक औरत के पास नाम में बड़ा ढेर क्यूबान हो गए है ना आशा जी। तो यहाँ पे बतावे क्यूबांस फ्राउन बफ्राइट एट मेंशन हांदन दर्दस लाख तो फर मेल से ऑफ अन ऑफ द लुक्ट हाफन भैया इस सबके सबन ले के आवे है सूरीनाम देश में क्यूबान के इस सबसे ले जा प्रोटेस्टवे हौसल करवावे भैया जबरदस्ती चलो हौसल करो जाने कौन हौसलवा ना चापू वाला हौसलवा मौसी समझ गए तो कौन हौसलवा करे राकेश मोई से जाने है। तो बतिया ये है कि औरत के समान लावे है क्यूबा के औरत के और बोले चल तो के हुआ पे हम मोई मोई काम देवे रेस्टोरेंट में जइयो बामी बनइयो नासी गोरिंग बनइयो नहीं मोई मोई काम करी और ले जाए के प्रोस्टोस्टवी में धकेल ले है और ना कि शहर में ले जाए के जंगल वाला प्रोस्टोस्टवी में धर दे भैया कि जाओ हौसल करो और ऊपर जाओ हौसल कर लो पर शरीर बेच लो बाटे तो तोर पैसो उ ले लेवे। तो ये अत्याचार है कि ना वो औरत अपन शरीर बेची से प्रोटेस्टवी करी से और उस सब औरत के तू जबरदस्ती लाई के मैं आंध्र बदूले और प्रोटेस्टवी में धर दे ले बाटे फोर वेंसन ना सुरीनाम से इन खबरा और बोले 9 तारीख के एक क्यूबा के औरत या भगल है भैया भगल है और जाए किसी पाही नालिश करी से दियर वोनिंग पर मारी फॉर ब्लेफ एंड मोक्लक्स लाख तो फॉर वारफान मेंशन हंडल और जाए के नालिश करी से तो एमा पकड़ान है आदमी भैया और बोले है तेजस अक्सी वर्न ट्वी फॉर मीन दिस लाख तो फॉर आन कट्रोफन दुगो मिलल है और बताए गए हैगा फॉल्सबल ऑफ द सलाई से और बोले लाई सेगा ऑन फरक्लार बार स्कूल फन 6000 अमेरिकन डॉलर के बोले उसे के स्कूल दे से ना अन कम सो हिन एन ऑन फरक्लार द स्कूल फन 6000 अमेरिकन डॉलर से opgeleerd ook zouden zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid. De vrouwen verklaarden verder dat zij verder gedwongen om de om als prostituee usapke zo waar bole 6000 dollar tu bhariye ab jao kamai kamai humme bharo. To ye baat hai to kumar shanu casino ke baat cheez kare hai ki ab dekho क्या हो रहा है हमारे जब देखो भौजी के का भइल है हमारे प्यारी भौजी के का भइल है। हाँ हवा पंपू करे हारजेस तो बात ये हुए भैया भौजी के का भइल हमारे भौजी के कटली से दौड़ैले माटे नानी ई चकल से देख हमारे सुरीनाम में और एगो मन फाल पार्टनर एंड स्कॉन्शियस भौजी के और पपान में कटली से भैया मारी से ओ तो के आईना फैना सब झार के न चक्का चूर कर दी से
ये बात हुए भैया बनवारी स्त्रात है बुधवार के, तो बतावे सरनाम में पार्टनर एनहार्सिस और बोले हैगा अन अन गटलीस लेके गया अनफाल करी से ओ तो फोटो तोड़ दे से हो टाइम के सिपाही एकर बारे में गइल है और पार्टनर अल 2 इयर सामन ओपन एड्रेस वुंडन फॉर द फ्रॉम द मदर इज फ्रॉम बेबी। तो ये सब बात है हमारे भौजी के, सब कोई भौजी के देवे कुकू खाई के भौजी से प्यार करे है। अई भौजी के कटलीस से गइला काटे आप लोग जानो है। और ये हैगा यशरुन के बारे में, सफीरा सफीरा यशरुन भैया अमेरिका में रहा फंड ओएस टॉप में टॉप टॉप मीडिया वेयर कर रहा और एक सब डिप्लोमात पासपोर्ट सब लेके और धर देगा कौन चीज बारे में अमेरिका डिप्लोमात फिशम एक जो रहा यशरुन के सफीरा ये इन खतरों को और एक जाए के लंगर रहमात फेस में लाइफ करता हुआ रहता अमेरिका में। अभी श्री नाम में चले आए हैं अमेरिकन से मिनिस्टर फ्रॉम बैतल साक बोले बोले के फीस हम इंटरेक्ट कर ली है हम तो श्री नाम में एक स्ट्रफ रख लगा ऑन द सुक ना फॉर मुबल का कोरिप्सी ठीक है ये श्री लोप कोरिप्सी भैया जी यो हम सुना सुना थक गई सर नाम में भैया इतना कोरिप्स दिस हुआ खाली कोरिप्सी से चले भैया एक घंटा हो गए हमारा न्यूज सवा। हाँ ये घंटा हो गया था, ये घंटा ये हो गए तब तो समझ गए ले क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसी प्रोग्राम से Never know, दोस्त never know, हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम को 6-7 बजे लेकर चलते हैं, मंगलवार को शाम को 6 बजे, सब रविवार को दिन में 1 बजे हम हैरहाल करते हैं। जितने लोग हमारा फेसबुक पे है बहुत लोग है दोस्तों, आप सबको हम बहुत बहुत प्यार देते हैं। यहाँ पे हैप्पी कलंग रहे हेमंत बुद्धू धर्मेंद्र इसरी और दिखाई गए एरमा राम तहल सिंह राज राम लगन और बताए गए कुमार

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। फुल हॉट वन, फुल हॉट वन।

दोस्तों यहाँ पे फोन आया है और फिदा ने अपनी जुनैद को काला का शाला के गीत मांग करा किया है अनामिका का। तो भैया जुनैद के चॉइस से अपने यानी कि दिल रुबा जाने मन और वो है फिदा के लिए बहुत फिदा होकर इस गीत को मांग किया है।

तो दोस्तों अभी आप लोगों शकाला शकाला के गीत को सुना है। उसने मांग किया है, फिदा ने बहुत प्यार से फिदा होकर अपने जुनैद के लिए। दोस्तों तो हम कहते हैं आपको, हम बता दें और सबके हम यहाँ से कहते हैं फैन वीकेंड।

और तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे में क्या है दोस्तों, और तेरे चेहरे में वो जादू है, और वो जादू है दोस्तों कि तेरे चेहरे दिखते दिखते और जैसे कोई डोर तथई घिजाया जा है वैसे हम ऑटोमाती स्टोरे अगर हम घींच कर चला आते हैं तो वो चेहरा में क्या जादू है दोस्तों कि बिना किसी मुसीबत से और जाकर और खींचा जा जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं आपकी आ जाने से क्या होता है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम दोस्तों, और आपकी आ जाने से क्या हो जाता है, मोहम्मद अजीज साधना सरगम का गाया हुआ ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है खुद गर्ज। आओ सुना जाए, इसमें गोविंदा काम किए हैं हमारे दोस्तों।

और आपकी आजाने से क्या क्या हो जाता हो जाता है। फिल्म के नाम है खुद गर्ज का, ये जोंग है हमारे यारो। और उसके बाद तो हम प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम लेकर और आगे को चलते हैं कि यहाँ पर बताए गए जाने क्यों लोग, क्या आपको मालूम है कि लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? अगर जब मालूम होगा तो आप लोग हमें बता सकते हैं तार करके। और हमारा सीडियो की नंबर है 07 3 20 07 7। अगर ये मोहब्बत क्यों लोग करते हैं और क्या आपको भी मोहब्बत हो गया है? अगर ये हो गया हो और नहीं होना

है तो बताना फिल्म के नाम है महबूब की मेहनी नाइटिंगेल। लता मंगेशकर का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

और जाने जाने क्यों लोग मोहब्बतें और किया करते हैं। और आपको अगर ये मालूम होगा कि किस लिए लोग मोहब्बत करते हैं तो हमें आप लोग बतला सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं ये है यानी कि लता जी इस गीत को गाए, फिल्म के नाम है महबूब का मेहंदी। महबूब का मेहंदी नाइटी गील लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है। उसके बाद हम एक बार फिर चलते हैं फिल्म धर्मात्मा की ओर, आओ सुना जाए।

और क्या तुमने भी किसी से प्यार किया है? और अगर ये प्यार किया होगा तो हमें आप लोगों ने जरूर बताना कि कौन सा प्यार आपने किया है हमारे यारों, और अगर जो किया है तो हमें जरूर बताना। उसके बाद हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर कि अगर ये आपको दीवांगनी होता है तो दीवांगनी कब होता है? जब बहुत बहुत मोहब्बत हो जाता है। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना फिल्म का नाम है, नीखन तक का ये फिल्म है और शाहरुख खान, दिव्या भारती इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुना जाए।

ऐसा दीवांगनी और दीवानी किसका होता है, ऐसा दीवांगनी। और दोस्तों शाहरुख खान इस फिल्म में देविया भारती सिंह काम किया है, और अगर परदेसी के बाद जो हो जाए तो परदेसी से दिल लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं परदेशियों से अगर ये अखिया लड़ाना है तो ओमा कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन बुरी बात ये है कि अगर जब परदेसी को जाना पड़ेगा, जब अगर परदेसी को जाना पड़ेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो आ जाएगा ना यार राजा, कि अब तो सोचना है कि वो परदेसी कब आएगा, फिर से लौट कर वो कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हम आपको कुछ परदेसी की बात बताते हैं कि परदेसी के गीत हम आपको सुनाते हैं।

और परदेसियों से अखियां मिलाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन दिल थाम कर रखना अगर जब परदेसियों को जाना है तो हर किसी को ये सब प्यार कहाँ होता है दोस्तों, सिर्फ नसीब वालों को होता है। श्रीदेवी फिरोज खान इस फिल्म में काम किया है, आ मिल के सुना जाए कि ये क्या है।

और हर किसी को, हर किसी को कहाँ प्यार मिलता है इस जिंदगी में दोस्तों, सिर्फ नसीब वाला को, नसीब वालों को यानी कि सच्चा प्यार मिलता है हमारे यारों। और उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, वो कौन सा गीत है, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, दिल लगाकर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मनहर उदास का ये गाया हुआ ये सॉन्ग।

और फिल्म कुर्बानी का निकाला हुआ ये सॉन्ग है, जिसमें विनोद खन्ना सीने तमन ने काम किए है मन हर उदास का ये सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाए हैं, बहुत मोहब्बत भरी प्यार भरी सॉन्ग है। इसके बाद हम और चलते हैं फिरोज खान हेमा मालिनी की ओर, आओ सुना जाए।

और तू जान हमारी हो, क्या खूब लगती हो, और बड़ी बड़ी चमकल लगती हो। ये एक लव स्टोरी सॉन्ग है, फिल्म के नाम है खलनायक पलकी में होके सवार चली रे अलका याग्निक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने काम किया है। आओ सुना जाए इस गीत को।

और दोस्तों आपको हम आपको बताते हैं कि हम चलते हैं एक गीत की ओर, और वो गीत है गंगा जैसा मन तेरा। गंगा जैसा मन तेरा है और मोहम्मद अजीज इस गीत को गाया है। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

तुम तो ठहरे परदेसी और स्यात क्या निभाओगे जरा बताओ। अगर आप किसी परदेसी से प्यार करेंगे तो उसको कौन भरोसा है, कौन भरोसा है कि वो साथ तेरे साथ वो निभाएंगे। तो हम चलते हैं अलका याग्निक और माधुरी दीक्षित का, जिसमें काम किया है, फिल्म के नाम है खलनायक की ओर।

के और पालकी में होके सवार चलिए, और मैं तो अपनी साजन की और द्वार चलिए, और चलते हैं अलका याग्निक कुमार शानू के ओर, जिस फिल्म में संजय दत्त ने काम किया है महिमा चौधरी के साथ। तो चला जाए अलका आपकी आना और दिल में धड़काना।

और मेहनी लगा करे और खुद चले आना, और जब मेहनी लगेगी तो प्यार जरूर आएंगे हमारे दोस्तों। चलते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की ओर। इस फिल्म में गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने काम किया है, और दोस्तों आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है, और ये बहुत मस्त फिल्म के नाम है क्रेडिट्स भैया। हाँ।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और कुछ शायर और शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे। दोस्तों प्यार भरी गीतों का महार प्रोग्राम, यहां से हम चलते हैं, कुछ शायर और शायरी हो जाए कि मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा हमारे यारो। कि कहते हैं कि एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, हर एक रिश्ता सी जमीन से तोड़ जाएंगे, हर एक रिश्ता इस जमीन से तोड़ जाएंगे, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन रुलाते हुए सबको हम छोड़ जाएंगे। ये हमारा पहला शेर है आज की।

और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ओ जब जुल्फे उड़ते हैं तो कुमारियों का दिल क्यों मचलते हैं, आपको पता है तो जरूर बता देना कि क्यों मचलते हैं, कि कहते हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्या मुस्कुराता है। जब आपके नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, तसल्ली होती है मन को कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। अक्सर हम अपनी रात यूं बर्बाद करती है, अक्सर हम अपनी रात क्यों बर्बाद करती है, बैठ के किसी कोने में उनको याद करती है, उनके वापिस आने की उम्मीद तो छोड़ दी कब की, फिर भी ना जाने क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करती है। हम चलते हैं नाइटिंगेल, लता जी का एक सॉन्ग है जो एक हिट फिल्म था, फिल्म के नाम है बॉबी।

लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।

और अफसर कोई लड़की इस हाल में कोई जरूर कभी 16 वर्ष के थे दोस्तों। फिल्म के नाम है बॉबी और ये यानी कि एक हिट सुपर हिट फिल्म थी ऋषि कपूर का दोस्तों और डिंपल का। हम कहते हैं कि किस्मत के लकीरों पर, किस्मत के लकीरों पर यकीन, किस्मत के लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है जॉनी, किस्मत के लकीरों पर और यकीन कर दिया है जॉनी। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरें क्यों नहीं, ये लकीरों क्यों नहीं दोस्तों। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी, कोई देखे तो हमारी बेबसी, हम सभी के हो चाहते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। हम सबको हो जाते हैं पर हमारा कोई नहीं होता है दोस्तों। कि कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी के जिंदगी बर्बाद मत करना। फूल तुम्हें हम भेजाए हैं यहां रेडियो फाहुन के माध्यम से और ये है मैथिली मुकेश और

और फूल भी, और भेजा है खत में और फूल नहीं, वो किसी का दिल है दोस्तों, यानी कि फूल के खुशबू में किसी के दिल भी चला जाता है कि कहते हैं ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटे शायद ना आ सकूं, ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटते शायद ना आ सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो खबर कर देना सारी की सारी, सारी की सारी ले जाऊंगा मैं, यानी कि तुम्हारा गम। तो दोस्त इसी को कहते हैं दोस्तों कि बहुत रोया है दिल, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, कुछ ना मिला रूप से भी फरियाद करके, वो कह गए मैं ना दूंगी साथ आपका, कोई पूछे उन्हें क्या मिला हमें बर्बाद करके। हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, वो है फिल्म के नाम है लव स्टोरी जिसमें, और वो है कुमार गौरव वियंती इसमें काम किया है, और ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों। ये गीत हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे।

और मैं भी आई आई आई लव स्टोरी फिल्म का नाम है 1981 का। और जितने लोग इस समय पे 18-19 बरिश के थे दोस्तों, तो फुल हाउस के साथ हमारा सूरीनाम का जो जितना फिल्म हाउस थे वो एकदम फुल थे दोस्तों। इस फिल्म भी हम भी कई बार जाकर देखे है लेकिन मन नहीं भरा। एक मोहब्बत भरी प्यार का ये फिल्म है और हम हसरत करती है जिनकी वो तो छुप गई कहीं, वो तो छुप गई कहीं, अगर तुम साथ दे तो नजर आ जाएंगी वो कहीं, कि अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने, अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने, उसकी खुशी ढूंढते रहते तो बदनाम हो गई हम, बदल पे छलके है। और नैतिक लता जी का ये एक जोंग है दोस्तों, आ मिलकर सुना जाए, जिसमें अनिल ऋषि मीनाक्षी काम किए है। और इस फिल्म का हम खोजते हैं ये कौन फिल्म का गीत है, अगर जो हमें मालूम हो गया दोस्तों तो आपको हम जरूर बता देंगे। लेकिन और इस फिल्म में काम किया है मीनाक्षी, काम किया है दोस्तों। और आओ मिलकर सुना जाए इस गीत को।

और बादल पे चल के आ, और इसमें अनिल कपूर, ऋषि ऋषि मीनाक्षी सोनम, नाइटिंगेल लता जी और श्रीस का ये गाया यानी कि फिल्म है और बदल पे छलके है, बदल पे छलके है सॉन्ग का नाम है। और दोस्तों हम चलते हैं कुछ शायर और शेरी के ओर, और कहते हैं कि पलकों से आंखों की, पलकों के आंखों की हिफाजत होती है, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल के अमानत होती है, हाय और हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। और कितने लोग हैं जो अलीनस्तांद है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं, अकेलापन है, मेंस दी अलीनसाइन फॉर दी मेंस हैप्पी की नाम लिख अनपार मोइशाइस एंड खाद रोम कि ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना हम है किसी के ना हमारा है कोई। कहते हैं चेहरे के हंसी से, चेहरे के हंसी से हर गम छुपाऊं, बहुत कुछ बोला पर कुछ ना बताऊं, कुछ ना रोतो कुछ ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, खुद ना रूठो पर किसी को पर सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का बस जीते जाओ। और कभी कभी प्यार करते हैं तुम किसी से लेकिन वो अमानत किसी और का है।

और दोस्तों तू प्यार है और किसी और का और तुझसे चाहता है कोई और है कि कहते हैं प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह कर भी आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़ कर कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। और जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है बस अलवास नया लाया हूँ, ऐ काश दूर रहने वाले ठड़को एक बात तुहके एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल जरूर रखना।

0: ला।
1: ये तो सही बात है दोस्तों, जैसा मेरा प्यार है वैसा हमारा गुस्सा वो भी है दोस्तों। आपको यहाँ गीत में बताए गए है कि कहते हैं किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। और कहते यार करते हैं तुम्हें तन्हाई में, याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया के बीच में, हम मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हारी ही परछाई में। तो दोस्तों ये कुछ शायरी और शायरी आप लोग के लिए हम चलाएं।

फार होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

की और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: ओ मेरे दिल की चैन और सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहा सुना।

और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।

मेराम ने प्यासा। दोस्तों एक गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए, और अगर आपकी चान कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है काला बाजार। के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है कुर्बानी, ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि कैसे। ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एक वो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

और आकर दोस्तों महफिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्त,

और ये सब गीत से, और ये सब गीत से आदमी लोग के गर्मी लग जाता है। प्यार के गीत है और प्यार के मूड में आज हैं, तो हम और अगला गीत की ओर जाते हैं। और वो है, जब किसी को जब आप प्यार करते हैं तो आपको क्या दिखते हैं आपकी आंखों के आगे, आपके नज़र के आगे क्या आ जाते हैं। जब अगर सचमुच किसी को प्यार जे आप करते हो तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

अरे दोस्तों, आज आप लोग को हम ओनली लवली सॉन्ग सुनाएंगे। हम चलते हैं जग घुमाए गब घुमाए के ओर, हम चलते हैं एक प्यार भरी लवली सॉन्ग, राहत फतेह अली खान।

0: और जग घूमता जैसा तुम्हारा और क्या क्या है दोस्तों, तो हम आची फिर से और प्यार के मूड में हैं। चलते हैं तेरी मेरी क्या है, चला जाए।
1: शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है।

हरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो तो कैसे होगा हमारे यारो। और दोस्तों तो एक गीत हम और आप लोग को, ये है प्यार भरी नगमों की बहार, प्रोग्राम ख्वाबों का तू है और क्या।

तू है रे गुजर रे तो दोस्तों हम प्यार के मूड में आज हम हैं ते हैं तो यारो हम चलते हैं एक गीत की ओर।

मेरा एक सपना है, क्या आपके भी सपना होगा? तो जो सपना है तो कभी कभी पूरा हो जाता है और कभी कभी और बहुत अफसोस है कि नहीं पूरा होता है। मरे एक छोटू के लिए है।

उम्र के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में जयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को जरूर पसंद आएगी।

बेताब से भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

ये सुंदर शब्द जिन हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाला है फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार, और फिल्म का नाम है कति पतंग, गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा। मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल, लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए, ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ऐ हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चल। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

0: Morning Radio.
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood. Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.
2: पत्थर के सनम है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम आप सभी के वास्ते पेश करते हैं द टाइटल. मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं.

दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किया है फ्रॉम द मूवी उपकार से आप सुन रहे थे। मैं किसी अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं, फिल्म का नाम है एक थी रीता। द माइटी मुकेश जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं और म्यूजिक दिए हैं जयदेव जी।

अभी आप सुन रहे थे मैं किसी अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जिसका कोई नहीं है उसका तो भगवान होता है। सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी एक थी रीता से हमने ये गीत पेश किए हैं मुकेश जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले थे और म्यूजिक दिए हैं जयदेव जी। उलझन सूझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊँ कहाँ मैं।

लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वादियाँ मेरा दामन, फ्रॉम द मूवी अभिलाषा से हमने पेश किए हैं। कितने दिन आंखें तरसेंगे, नया जमाना आएगा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी नया जमाना।

0: फिल्म का नाम है नया जमाना और द टाइटल हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भौरा डोले।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।